नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा

11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

卷等。किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य ये है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के बाद 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन का भाग 7। कलाकार गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। और कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 7 और 7:30 पर। सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8 होंगे समाचार और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, और यही कार्यक्रम दोपहर 2 पुनः सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के अंतर्गत नए गीत। आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और रात्रि 9:30। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 और दोपहर 12 सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर होगा यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर इस कार्यक्रम में तय कीजिए हमारे साथ सफर दोपहर 1 और आप इस कार्यक्रम में कमेंट्स द्वारा फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3 और दोपहर 4 सुनिए सेहतनामा के पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत सेहतनामा। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 आप हिंदी में समाचार भी सुन सकेंगे। शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा यानी कि कार्यक्रमों की रूपरेखा। संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 और

शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर में सुनिए सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक। हवा महल में सुनिए झलकी, ये भी खूब रही। लेखन उर्मिला मिश्रा का, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 और 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। शीर्षक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए, ये होगा रात्रि 9:00 और 10:00 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर जयंत प्रात्रिकर का और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। अभी आपने सुना झरोखा। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192।

दावत का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकई को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, भागम भाग के इस जीवन में संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है। संगीत में अगर भक्ति की धारा हो तो वो संगीत हमें एक अलौकिक संसार में ले जाता है। भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन, इसकी सातवीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप जलोटा जी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: स्वागत कर रहे हैं तबले पर आशीष झा जी का और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर जी का। अनूप जी, आपने अपने भजनों में बहुत सारे राग रागिनियों का प्रयोग किया है, यूं कहें कि घुमावदार सुरों का प्रयोग किया है। अपने गायन में गमक, मीड, खटका, मुर्की, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बावजूद एक आम श्रोता बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है, समझ लेता है। तो ये जो बारीकी के साथ आप खेल करते हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत बताइए।
2: सच तो ये है कि किसी भी गायकी के अंग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो साधना हो जाए, जब वो सध जाए, तो उसको कुछ इस तरह गाना चाहिए कि लोगों को आसान लगे, लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब वो गाने की कोशिश करें तो उनको मुश्किल लगे, सुनने में उन्हें आसान लगे, लेकिन जब कोशिश करें तो उनको लगे नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा गले से। तो हमने वही कोशिश की है कि छोटी छोटी मुर्कियां, छोटी छोटी ताने, उसको ऐसे सहज ढंग से हम ले लेते हैं कि सामने वाले को लगता है तो आसान होगा
1: जी,
2: लेकिन जब उसको करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा कि आसान नहीं है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु ने इस तरह सिखाया हमको। अब जैसे एक भजन है, रंग दे चुनरिया
1: जी,
2: मैंने बहुत साल पहले ये भजन आनंद कुमार जी से सुना था, बहुत अच्छे गायक है वो। तो मैंने फिर उसको अपने ढंग से, उस भजन को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपने ढंग से गाता हूँ। तो सुनने में वो भजन बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब गाने लगो तो लगता है कि आसान नहीं है, इसके अंदर जो काम है
1: जी,
2: उसके लिए

0: वाह, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे। यहाँ पर एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का जैसे भेद यहाँ पर मिट जाता है, आप शास्त्रीय संगीत के साथ साथ किस तरह से सुगम संगीत तैयार करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा और सबसे पहले शास्त्रीय संगीत ही गाना शुरू किया मंच पे। फिर मुझे लगा कि यदि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं तो माध्यम इसी शास्त्रीय को सुगम करना होगा, और वही मैंने किया, उसी को सुगम किया है। है ये शास्त्रीय है लेकिन इसको एक सुगमता दी है, और उस माध्यम से ये ऐसे लोगों तक पहुंच गया जो शास्त्रीय नहीं सुनते थे और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ गई। ये मैंने कोशिश की
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनूप जी, फिर से वही वक्त आ गया है जो हमें नहीं पसंद है अनुमति लेने का वक्त आ गया है, तो आज की इस कड़ी से श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। कल अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तो हमारे श्रोताओं को सुनते रहना है ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं प्यार की राहें इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश ने गाया है। कानू घोष का लिखा ये गीत है और संगीत है प्रेम धवन का।

0: गीता दत्त का गाया ये गीत अब सुनिए। फिल्म का नाम मिलन, प्रेम धवन की रचना है और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।
1: आइए जना

Tira.

0: तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म सिम सिम मर्जीना से। प्रेम धवन की रचना थी और एआर कुरैशी ने इसे संगीतबद्ध किया था।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनाते हैं मुबारक बेगम की आवाज में केदार शर्मा का लिखा ये गीत जिसकी लय बनाई है स्नेहल भटकर ने। फिल्म का नाम हमारी याद आएगी।

छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए राही फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। प्रेम धवन के बोल हैं जिस पर सुरों को सजाया गया है अनिल बिस्वास द्वारा।

0: मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं।

0: सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नव नियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी

0: साकार किया है, जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नीयत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
1: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रूपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग-अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

0: इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: अच्छा तो ये बताओ,
4: बागों में बाहर है
3: क्या?
4: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
3: है।
4: गर्मियों की निहार है?
3: हाँ, है।
4: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना, ना, ना।

कहके तो भवरा वही जाए, दिल का पपिया तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आपने सुना ये अप्रैल फूल फिल्म का गीत। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: जवान मोहब्बत, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

ऐसा समा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना, ये दिल का राज है दिल में रखो दिल पर मेरे जाना, मेरे दिल पर मेरे जाना। ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए अब आपको सुनाते हैं गवार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। रजिंदर कृष्ण ने इसे लिखा है, नौशाद का संगीत।

लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए आनंद बख्शी के बोल है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम मस्ताना।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा।

इस गीत के साथ ही आज का हम है रहे प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा करकर देसाई को नमस्कार।

0: इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
4: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
6: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण मकान सूची

0: आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनी

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करेंगे आज इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने। प्रसून जोशी की रचना है, शंकर एहसान लॉय का संगीत, फिल्म का नाम मणिकर्णिका।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के अगले गीत। दिल धड़कने दो फिल्म का नाम है, सुकृति कक्कर सिद्धार्थ महादेवन, इन्होंने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत। श्रेया घोषाल, गणेश चंदन सिवे और मुतजबा अजीज नाजा की आवाजें।

बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गीत को लिखा सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश सर्णसिव ने, और इस गीत की को संगीत से सजाया साहिल, प्रीतेश और नितिन शंकर ने। और ये जब आपको सुनाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है अजय अतुल का।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अब वक्त है एक अंतराल का।

क्षेत्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ, संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, एआर रहमान की धुन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मीत ब्रोस अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: एक लाख दो बच जाओगे।
2: इतने

0: से।
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
6: फिर जीने की तमन्ना है।
5: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
7: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
5: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
7: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
5: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: से प्यार है,
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना
0: बागों में बहार है।
2: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सह नायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: संवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सन 1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की, साथ में थे

सैफ अली खान और सोनाली बिंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा

और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तबरेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993 फिल्म

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब छूट लिया गया, पहले मैंने स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई, आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी,
0: सारी फिल्म त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर की, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि

0: यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर। तो जो भी हो, आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है। दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटे भी जाएंगे वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर दी थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करो, तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी,
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे ढूंढते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है। तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने सुनो, उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब वो ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर, मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी।
1: हाँ हाँ।
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं राजकपूर को ऐसा कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सचिन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।

0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग-जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है, फलां क्यों नहीं, मीटर रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं थी
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूंगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस तो और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था।
1: पहली फिल्म थी आपकी।
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: जान।
1: क्या मौसम है चल के दूसरी
2: के। बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा गाना। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
1: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
2: किसके?
1: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे
1: हाँ।
2: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाप के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
1: अरे वाह,
2: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
1: जूली
2: भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप
1: मिली।

0: को अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया मैंने जिस चीज से कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा जरा मुश्किल होता है तुझे बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी तो मैं इससे मिलने गया बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर बोला हाँ बिल्कुल मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी और यश जी के यहाँ जाकर सेटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे पूरा करूंगा और उसने पिक्चर ले ली उसने बहुत मेहनत की बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ जबरदस्त म्यूजिक बना
1: बहुत अच्छे गाने चले
0: बहुत नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास
1: अच्छा
0: करने के लिए तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है गाने तेरी लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा
1: ओ
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने यश जी ने ओके ओके कर दिया था
1: हाँ, हाँ,
0: वो कुछ हुआ था ऐसा
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल ऐसा तो उन्होंने कर दिया अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब का पर्सन थे मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया दोनों के साथ किया था तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर
1: बड़े अच्छे गाने बने आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी

ये एड्रेस सुन रहे था दोनों, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, रांची के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो है
1: नहीं बहुत अच्छे रहे जो मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेटेस दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूजडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूजडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी,
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ। और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह,
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की, वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार, मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आके रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बावरा रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ नहीं होती। बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ, तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म निकलता हूँ, ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन तू भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था, और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर,
0: बाबा
1: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था, वो जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं बियर पिएगा, वहां पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहां बार थी ओबराय होटल में बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया ठंडी में काम रहा हूं, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर पीनी है तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
0: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: رنگ درنگ.
1: सभी सुनने वालों को नमस्कार. रंग तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. यह है लकी अली की आवाज, असलम के बोल और लकी अली का संगीत.

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं, सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

रंग का रंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षिका संगीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़े से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना। बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।

0: कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
1: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
1: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली व्हेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी,
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
2: फाइन, good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pet.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
9: Yes, sir.
10: We like.
2: Lovely butterflies?
9: Yes, sir.
2: And lovely, colorful, chirping birds.
9: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
11: Sir, I go to the park with my parents on holidays.

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा।

0: good.
1: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds, and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
2: Rainbow!
0: I have seen rainbow.
3: It has 7 colors.
1: So children, whenever you see the clouds, they have different
2: shapes.
1: Yes, shapes. And they have different
2: colors.
1: Very nice.
4: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
7: तुलसी गौड़ा, 72 ईयर ओल्ड ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
8: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
4: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री
10: समाज सेवा पर्यावरण.
4: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
11: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच

0: तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश

0: बचाओ।
1: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
1: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
3: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
3: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव

0: प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी, रविंद्र रावल के बोल थे और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने। ना ना ना ना ना।

0: मुझे सवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवें।
0: तेरा जब

लगे तो हाँ कर दो, झूठ लगे तो ना कर दो।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
1: ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है, तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूं। ये गाना सुनिए।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है।

होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है। किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं। ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरे फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारतें करते देखती हूं तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखे ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता, ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंटी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और दो तीन साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभ्यारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में दो दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में ली गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने सजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं यादगार चीजें धरोहर विरासत ये म्यूजियम उन्होंने दो बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे वीबीएस के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको, उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकालकर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूं। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देख

रखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूं। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहां क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों न हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा, वक्त को पहचानो। अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लेनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूं। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब न कोई गिला है, न किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना, संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे न तो रोका जा सकता है और न ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहां, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है, परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है,

और हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती। ये वो छाया है जहां मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहां आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अपने परिवार के साथ हमें वक्त जरूर बिताना चाहिए और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे। एक

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया।

0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज

0: अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर

0: पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

पूछे हाँ, तुम खिंच लोगे हाथ मलोगे

0: ये गम ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।
1: आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया है, मैं सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत हो गई
1: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात

0: में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगे तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों हो, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल, तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
3: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
5: चलिए मैं रख देता हूँ।
3: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गठ्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
2: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
3: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी

0: आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई,
1: कौन कौन है, कौन है रे, रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है।
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ,

0: मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
1: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
1: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
2: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
2: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
2: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
2: दूध आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज न किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया।

0: करूंगा बाबूजी,
1: देवी जी ने कहा।
2: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
1: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी, उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए, एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है।
0: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केन्द्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो हैं वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक

0: खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
1: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता
0: बहुत
1: है।
0: अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल तलवार ये सब, कितनी वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
1: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
0: सब नहीं करना चाहिए।
1: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
0: डोरी लगी
1: जिससे कि बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
0: सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
1: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा।
0: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं, है ना।
1: तो चलिए, हम करीब पहुंच रहे हैं
0: गीत के।
1: गीत के

0: तो राजल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये अब पढ़ेंगे सामग्री
1: पता लग जाएगा। तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गांव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात। बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: जो मोबाइल शरारते
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है और मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने से।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही है कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बात होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और

0: अपनापन मांगते हैं सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं, कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत प्वाइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, पूरे टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिये, मोबाइल मेज पे रखिये, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहुओं और बेटों की तू तू मैं कभी न कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूर ही रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात

0: कर लें।
1: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है।

0: मंत्री वर्मा और
1: राजुल का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं?
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज

0: छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
1: जी।
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे है, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने बताया, दो चीजें साथ में ले ले, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा।
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्या दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्या है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीजें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन नुकसान करता है।
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और

0: फिर उनको बताते कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं,
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको?
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनवा रहे हैं।

0: साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है। वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें।

0: अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
1: ओहो, हैवी हो जाएगा।
0: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
1: जी जी जी तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है, कि जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट

0: करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है और उसपे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से?
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
0: यस।
1: बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको

0: शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
1: अच्छा।
0: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
1: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
0: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
1: जैसे
0: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
1: जैसे ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंजॉय कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नाम कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहां से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।

0: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
1: इसका क्या काम होता है?
0: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे
1: जी।
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है
1: जी।
0: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है,
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है
0: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है जो कीटाणु है उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है
1: जी।
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे
1: जी। जी और देखिए आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा
0: जी। ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं या फिर वैसी कोई चीज नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए,
0: इश्क बुलावा हसी तो फसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर,
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर

0: ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं. फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीज ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं. सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बन करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है.
0: बिल्कुल.
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है. और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है. उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है. और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है. तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है. अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है. अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है. आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है. काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर देते, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है. तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है. एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है.
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है. आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशन अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती. और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा. तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे. रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
1: जैसे
0: है.
1: जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे

0: छाम रहेगा। आराम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है। तो जैसे मैंने बताया, रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी
1: जी,
0: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन एंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, भी ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है, विटामिन्स इम्पोर्टेंट है, सोर्सेज इम्पोर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

FM 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम को। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है युवा साथियों का मनचाहा कार्यक्रम युव वाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी युववाणी होस्ट और दोस्त पिंकी यादव का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी आज की चर्चा और साथ ही कराएंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार जड़ों के बिना किसी पेड़ का वजूद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अतीत के बिना किसी भविष्य का वजूद नहीं होता। आज हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हमारी असली ताकत केवल हमारी युवा आबादी नहीं है, बल्कि हमारी वह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें हजारों साल का अनुभव देती है। आज जब हम भविष्य की उड़ान की बात करते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि हमारे पंख तभी मजबूत होंगे जब हमारे पंख जमीन और इतिहास की सीख से जुड़े होंगे। इसी संबंध में धरोहर और युवा, अतीत से सीख, भविष्य की उड़ान एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक विषय है, जो हमें यह बताता है कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों से प्रेरणा और सीख प्राप्त कर एक मजबूत नवाचारी और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकती है। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं इस विषय के प्रमुख और व्यवहारिक पहलुओं के बारे में। दोस्तों, यह केवल पुराने स्मारकों या खंडहरों तक सीमित नहीं है, इसमें सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल, आयुर्वेद, हमारे पूर्वजों का योग, ज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों बात करें भविष्य की उड़ान की, तो आपको बता दें कि अतीत की नींव पर ही भविष्य की मजबूत इमारत खड़ी होती है। युवा इस ज्ञान का उपयोग नवाचार और तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अतीत हमारी जड़ें हैं और भविष्य हमारा आसमान। इसमें युवा बेमजबूत कड़ियां हैं जो अपनी जड़ों से पोषण प्राप्त कर आसमान की बुलंदियों को छूने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भविष्य की उड़ान भरकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। चर्चा हम यूं ही बरकरार रखेंगे, पर उससे पहले वक्त हो गया है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से सोहम की आवाज में ये गीत। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन एक साथ गूंजती है

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
8: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
7: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
8: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। Rail1 ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
9: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए Rail1 ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युव वाणी में। दोस्तों जब भी हम इंडोर गेम्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद खाली समय बिताना। परंतु ऐसा नहीं है। इंडोर गेम्स गर्मियों के मौसम में खेलने से हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि असल में दोस्तों इंडोर गेम सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक हाई इंटेंसिटी मेंटल वर्कआउट है। और इसी के साथ दोस्तों यदि आप इंडोर गेम्स को अपना पैशन बना लेते हैं तो यह आपके करियर के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो इसी संबंध में दोस्तों आइए सुनते हैं सुमेधा सक्सेना की ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जिन्होंने अपने बचपन के इंडोर गेम्स कैरम को अपना पैशन बनाकर उसमें जिला स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है।
1: दोस्तों आज के दौर में जहां मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने युद्ध को घेर रखा है, वहीं कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जो खेल के मैदान में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज युद्ध के पास टैलेंट है, लेकिन जरूरत है हम सभी को एक सही डायरेक्शन और डेडिकेशन की। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे आज के गेस्ट युवा, जिन्होंने करियर में डिस्ट्रिक्ट शानदार जीत को हासिल की है। तो दोस्तों कैरम जैसे फोकस्ड और स्किल बेस्ड गेम में जीत हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो आज कार्यक्रम युवाणी में हम सबसे पहले वेलकम करते हैं सुमेधा सक्सेना का।
2: धन्यवाद।
1: तो हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में परिचय दें।
2: मेरा नाम सुमेधा सक्सेना है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुरू से ही कैरम में बुक्स पढ़ना और वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, हर चीज में मेरा इंटरेस्ट था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है और फर्स्ट पोजीशन मुझे लानी है। और इसी के चलते चलते मैंने काफी चीजें ट्राई करी है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, हर चीज में मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद जब स्कूल वालों ने मेरी ये पोटेंशियल देखा कि मैं हर चीज में अच्छी हूँ, तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में भेजने का सोचा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम किस गेम के लिए जाना चाहोगी, तो मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता के बोला कि मुझे कैरम में जाना है, क्योंकि मुझे शुरू से ही बचपन से ही मैं कैरम में बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैरम ही मोस्टली खिलाया, बस फ्री टाइम रहता था मैं मोस्टली कैरम ही खेलती थी। तो उसी के चलते चलते फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में गई, मेरे स्कूल वालों ने मुझे डिस्ट्रिक्ट में भेजा और डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला। जो फीलिंग मुझे उस टाइम आई थी मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मुझे ये उपलब्धि हासिल हुई थी।
1: तो ये जानकर काफी अच्छा लगा है कि आपने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल को हासिल किया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां कि आप ऐसे ही अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स और भी लेते रहे।
2: धन्यवाद।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका फेवरेट गेम कैरम ही है ना?
2: बिल्कुल, कैरम के साथ साथ काफी चीजें हैं मेरी फेवरेट, बट कैरम खेलना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे।
1: तो कैरम खेलने की आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? लाइक आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली या फिर आपका ये शौक है?
2: बचपन से मैं कैरम खेल रही हूँ। कैरम के साथ साथ काफी गेम्स मैंने खेले हैं, क्योंकि मेरे फैमिली जो है, जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था, तो हमारे इंडोर गेम भी है एक तो कैरम, तो जब भी मेरी फैमिली को फ्री टाइम मिलता था तो हम सब लोग बैठकर कैरम ही खेलते थे। इससे क्या होता था, फैमिली टाइम ही स्पेंड होता था और कैरम में काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो हमें मेंटली स्टेबल होने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं।
1: तो ये काफी अच्छी बात है कि आपने कैरम को प्रायोरिटी दी और आप ऐसे ही कैरम को आगे भी प्रायोरिटी देती रहे। लाइक हम सब जानते हैं ना कि हम कोई भी काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो कई सारे हम सभी को चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो लाइक आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई तो आपने किन सारी चीजों को फेस किया?
2: फेस तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं बचपन से ही गेम्स में इंडल्ज थी, गेम्स खेलती थी और पढ़ाई भी साथ साथ करती थी। बस ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि पढ़ाई और गेम को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए तो हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता था। शुरू से ही मेरी जो जिंदगी है मैं मोस्टली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रही हूँ, और जब ज्यादा ज्यादा पढ़ते थे हम गैप लेते थे। आजकल के लोग तो क्या है कि रील स्क्रोल करते हैं, फोन में ज्यादा फेस टाइम, फोन टाइम ज्यादा देते हैं, लेकिन मैं बीच बीच के गैप में, इंटरवल में कैरम खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी और आउटडोर इंडोर गेम्स मुझे खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपना टाइम रील्स पे देखने पे और फोन देखने पे मैं इन्वेस्ट नहीं करती थी। कुछ प्रोडक्टिव चीज जो दिमाग को हेल्दी रखे, बॉडी को हेल्दी रखे, वो चीज खेलने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता था और माइंड भी फ्रेश होता था। गेम्स खेलने के बाद फिर जो पढ़ने बैठते थे उसके बाद

0: पढ़ाई होती थी वो तो नेक्स्ट लेवल की होती थी। जो भी पढ़ो तुरंत याद हो जाता था, ज्यादा हमें उस पर डिफिकल्टी नहीं लगती थी याद करने के लिए।
1: तो जैसा कि आपने बताया पढ़ाई की बात की है, तो आज के यूथ को देखो तो अगर उनसे पढ़ाई की बात करो तो उनको ज्यादा प्रेशराइज लगता है कि पढ़ाई और गेम्स को साथ लेकर चलना है, तो कैसे वो पॉसिबल होगा?
0: फोन हटा देंगे जब, तो उसके बाद हम आराम से पढ़ाई को और गेम्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला शुरू से ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चली हूँ, तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें। आप सारा दिन तो पढ़ नहीं पाएंगे ना, सारा दिन नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप छोटे छोटे इंटरवल्स में, जैसे 2 घंटे पढ़ाई करी तो 1 घंटे का ब्रेक में आप कुछ आउटडोर खेल लीजिए। आउटडोर बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं है, तो कुछ इंडोर खेल लीजिए। चेस से हमारा दिमाग इतना और कैरम से हमारा दिमाग इतना फोकस्ड हो जाता है कि उसके बाद जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें हर एक एक चीज ऑटोमेटिकली रीड भी करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो। और उसके बाद हम अगर अपना गोल टारगेट को बार बार रिवाइज करेंगे कि हमें ये करना है करना है करना है, तो हम वो अटेन कर ही लेंगे कैसे भी करके। अगर हमारा गोल यही रहा कि हम 1 घंटे बस फोन चलाएंगे उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे, हमारा दिमाग वैसे ही उसमें पूरी तरीके से थक जाएगा कि हमने इतना फोन चला लिया और जो फोन में देखा वही दिमाग में चलता जाएगा। अगर हम कैरम, चेस या आउटडोर गेम्स खेलेंगे उससे हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाएगा, हेल्दी होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, उसके बाद जब पढ़ने बैठेंगे तो फिर अच्छा हो।
1: तो जैसा कि आपने फोन की बात की है तो मुझे फोन से याद आया कि आजकल यूथ्स में मोबाइल एडिक्शन सबसे ज्यादा है ना।
0: हाँ,
1: हम सभी को एडिक्शन इतना ज्यादा है कि हम सुबह उठते ही नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। तो इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स से कैसे डिफरेंट है?
0: इंडोर गेम्स में हमें, पहली बात तो ये है कि हमें मौसम का जो असर होता है, जैसे कभी बारिश कभी धूप या ठंड, इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम कभी भी फ्री हो, हमें कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए पड़ते, कुछ भी नहीं, हमें बस एक बोर्ड लगाना है और बस बैठ जाते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कम जगह में हम कैरम, चेस, लूडो जैसी चीजें खेल सकते हैं, हमें उसके लिए बड़ी बड़ी जगह नहीं चाहिए, ग्राउंड्स नहीं चाहिए और हैवी हैवी प्राइस के जो इतना पैसे खर्च करके हम बैट खरीदते हैं और बॉल्स वगैरह खरीदते हैं, हमें उसके लिए भी इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। और ये इंडोर गेम्स हर उम्र के लोग खेल सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी इसे आसानी से खेल सकते हैं। इससे ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, इस खेल में सही इसे ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। इससे हमें, इसमें ये जरूरी नहीं रहता कि हम जीते या हारे, हम इसे इंजॉय करने के लिए खेलते हैं।
1: और ये जर्नी से मुझे काफी अच्छा लग रहा है सुन के कि मैं भी आज से ही कैरम खेलना शुरू करूंगी। तो क्या कोई स्पेशल टेक्निक या स्ट्रेटजी है जो आपने यूज की है कैरम खेलने के लिए?
0: एज सच कोई इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं जो हर गेम पर लागू होती हैं, एक तो होता है सेल्फ कंट्रोल, दूसरा पेशेंस होता है धैर्य रखना, और स्ट्रैटेजी होती है रणनीति, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। तो यही कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए।
1: तो जो लोग कैरम या किसी गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: मैं बस यही बोलूंगी कि अपने पैशन को फॉलो करो। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं जो ये पहचान ही नहीं पाते कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या, उन्हें किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज खेली ही नहीं हो। क्या पता वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहा उनमें, तो उन्होंने कभी वो चीज ट्राई ही नहीं करी। तो पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप हर चीज ट्राई करो। ऐसा कुछ चीज नहीं है जो हम लोग ना कर सके, हम सब चीजें कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है, हर चीज को ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे तो हम सभी में हैं। उसके बाद जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम किस चीज में अच्छे हैं, उसके बाद हमें उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर खेल में हम फ्यूचर देख सकते हैं अपना, हर खेल में। आपने देखा ही होगा बड़े बड़े बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, जो देश के लिए गोल्ड सिल्वर लाते हैं, वो बचपन से ही लग जाते हैं ये सब खेलने कूदने में। उन्हें पहले से ही पता चल जाता है, वो पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं किस चीज में ज्यादा अच्छा हूँ। तो हमें भी काफी चीजें ट्राई करने के बाद जब पता चलता है कि हम इस चीज में ज्यादा अच्छे हैं, तो हमें उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें उस चीज को भी आगे लेकर जाना चाहिए, ताकि हम भी अपने देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके।
1: और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उस पर फोकस करेंगे, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हम अपने गेम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस और रूटीन को फॉलो करेंगे? ये हमारे जितने भी जो साथ

0: सुन रहे हैं तो आप उनको ये बताएं कि हम किस रूटीन को फॉलो करें ताकि हम इस गेम को और अच्छा बेहतर बना सकें।
1: पहले तो मैं ये बोलूंगी कि रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना हमें, मतलब हमें ये करना ही चाहिए। इवन अगर हम कोई गेम नहीं खेलें या फिर हम किसी चीज में भी इंडल्ज नहीं हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो, तब भी हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद थोड़ी वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, उसके बाद हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, हमें तुरंत क्विक लर्न हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाता है जो भी हमने पढ़ा हो। उसके बाद फिर पढ़ाई करने के बाद फिर हम जब थोड़ा ब्रेक ले तो उसमें हम गेम्स एक्टिविटीज हो गई, बाहर की एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एज अ ब्रेक टाइम हम उस एक्टिविटी को इंजॉय करें, उस पे हम अपना ज्यादा स्ट्रेस ना दें। इंजॉयमेंट के रूप में अगर हम स्टार्ट करेंगे ये चीज तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ाई में भी हेल्प होगी और गेम भी हमारा वो शार्प हो जाएगा।
0: तो जैसा कि आपने बात की लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म से मुझे याद आया कि हम कैरम से ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनको डेवलप कर सकते हैं गेम खेल के?
1: पेशेंस है, सब्र, जो कि हर चीज में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, चाहे हम पढ़ रहे हों उसमें भी सब्र जरूरी है, खेल रहे हों उसमें भी सब्र जरूरी है। स्ट्रैटेजी, इवन पढ़ाई और खेलना दोनों में स्ट्रैटेजी जो कि रणनीति होती है वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रहती है। स्पोर्ट्स के लिए भी स्ट्रैटेजीज रहती हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर चीज। उसके बाद एकाग्रता, फिर कंट्रोल हो गया, सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, ये कई चीजें हैं जो दोनों के ऊपर लागू होती हैं, पढ़ने के ऊपर भी और खेल कूद के ऊपर भी।
0: तो लास्ट में आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहती है?
1: मैं यही बोलूंगी कि अपने पैशन को फॉलो करो, आपको आपके पैशन के बीच में कई रुकावटें आएंगी, बट हमें आगे बढ़ते जाना है और हार नहीं मानना है किसी भी चीज के ऊपर। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग अपने पैशन को फॉलो करें। कई लोगों का पैशन होता है बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन। हमें मोबाइल फोन को एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। हमें मोबाइल फोन को एज अ टूल ऑफ नॉलेज यूज करना चाहिए, हमें उससे हमेशा नॉलेज गेन करनी चाहिए, एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। लोग घंटों घंटों अपना वक्त फोन पे बर्बाद कर देते हैं जो वक्त कभी वापस नहीं मिल पाता। तो उस वक्त में हमेशा हम वो चीज करें जो हमारे लिए बेनिफिट दे, आगे चल के हमारा फ्यूचर बनाए, चाहे वो गेम हो या फिर वो कोई सब्जेक्ट हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। तो हमें फोन पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए उसको अटेन करने के लिए, वरना बैठे बैठे फोन चलाने से तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
0: तो आज की सुमेधा सक्सेना जी की इंस्पायरिंग बात से हमें यही सीख मिलती है कि फोकस, डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग से हम कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको इतनी अच्छी जर्नी के बारे में बताया और वो इस खेल में।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकाशवाणी रेडियो FM पे बुलाया आपने मुझे। थैंक यू सो मच।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इंडोर गेम्स के बारे में एकाग्रता और कौशल का मेल विषय पर सुमेधा सक्सेना की चंचल से ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। वक्त हो गया है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रिस से सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, गर्मियां आते ही कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, और हो भी क्यों ना, एक बार पानी भरा नहीं कि बस दिन भर की फुर्सत। तो वहीं सुबह शाम पौधों और घर के बाहर छिड़काव भी आप कर देते हैं, ताकि लॉन और घर की हरियाली में किसी तरह की कोई कमी ना आए। मगर क्या आपने सोचा है, अपने आसपास मौजूद जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के बारे में सोचा है कभी? आखिर उन्हें भी इस मौसम की मार झेलने के लिए इसी पानी की जरूरत होती है। तो आइए दोस्तों, इसी संबंध में चर्चा करते हैं गर्मियों के मौसम में स्वयं के साथ साथ पशु पक्षियों की देखभाल के बारे में। इस मौसम में अपनी छत या बालकनी में चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तनों में साफ पानी रखें और पानी के बर्तनों को रोज साफ करें। इससे मच्छरों को पनपने और बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। पानी के पास बाजरा, कंगनी या टूटे चावल जैसे अनाज रखें, ताकि उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। दोस्तों, बर्तनों को किसी पेड़ की छांव या कृत्रिम शेड के नीचे रखें, ताकि पानी गर्म ना हो, और संभव हो तो उनके बैठने के लिए बोरी या शेड का इंतजाम करें, ताकि वे तपती जमीन से बच सके। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गर्मियों के मौसम में इन बेजवान पशु पक्षियों की सहायता कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगली चर्चा की ओर। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, युवा शक्ति ही देश की असली संपत्ति है। आज जब हम सेहतमंद युवा सशक्त भारत की परिकल्पना करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण केवल स्वस्थ शरीर और जागरूक दिमाग से ही संभव है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज पूरा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और जागरूकता के बल हम एड्स जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारा कार्यक्रम रोज शाम 5 बजे लाइव न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन सकते हैं, और अपने सुझाव हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज @ आकाशवाणी झांसी के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुद को हाइड्रेट रखें। मुझे आपकी युववाणी होस्ट और दोस्त पिंकी यादव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनचाहा कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम नारी जगत।

नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को प्रत्यंचा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगी, और अच्छे से तो रहना ही है क्योंकि गर्मी भी अपने चरम पर है। बाहर इतनी गर्म हवा है कि दो मिनट भी धूप में रहना मुश्किल है। ऐसे में बहनों यदि बाहर निकलना है तो बिना सनस्क्रीन और कॉटन के टॉवल के बाहर ना जाएं। कॉटन के टॉवल से आप अपने कानों को लपेट सकती हैं और लू से बच सकती हैं, और सनस्क्रीन से चेहरे को धूप से बचा सकती हैं। बहनों वैसे तो हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, फिर चाहे वो हमारी स्किन हो, हमारे कपड़े हो, हमारा रुपया पैसा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है हमारा स्वास्थ्य, जिसके बारे में हम लोग कई बार लापरवाह हो जाते हैं, जो कि गंभीर विषय है। आज ऐसे ही एक गंभीर विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जो कि है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो कि हर साल 18 मई को मनाया जाता है, जो कि एक सुरक्षित और प्रभावी टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों, चिकित्सा पेशेवरों और स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों को समर्पित है। यह दिन एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बहनों भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए टीका ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप एचआईवी की रोकथाम, मुफ्त जांच या परामर्श के बारे में जानकारी चाहती हैं, तो भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको एनएसीओ के तहत नामित केंद्रों की मदद ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहा जाता है, वर्ल्ड एड्स डे कैंपेन के माध्यम से आप एचआईवी से जुड़ी वैश्विक पहलों और चिकित्सा जानकारी से अपडेट रह सकती हैं। बहनों सुरक्षित कल की ओर बढ़ते कदम का सीधा अर्थ है जानकारी अपनाना, नियमित जांच करवाना और वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना। बहनों वैसे तो हम महिलाएं हर चीजों को सहेजना बहुत अच्छे से जानती हैं, फिर चाहे वो हमारे घर का सामान हो, कीमती वस्त्र हो, कीमती तोहफे हो, सहेजना हर महिला की पहचान है। वो अपने रिश्तों को भी सहेज कर रख सकती है, अपने परिवार को भी सहेज कर रखती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सहेजना और महिला, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। तो बहनों जब हम इन सभी रिश्तों को, परिवार को सहेज कर रख सकते हैं, तो क्या अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित नहीं रख सकते? बहनों लोक संस्कृति और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में हम महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अपनी जीवन शैली, लोकगीतों, खान पान और त्योहारों के जरिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सच्ची संरक्षक बन सकती हैं। बहनों सबसे पहले बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां, उसके बाद कथाएं, नीति वचन मौखिक परंपराओं को जीवित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। साथ ही साथ बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और पारंपरिक चित्रकारी जैसी कलाओं को महिलाएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती हैं। विवाह, जन्म और फसल कटाई जैसे विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत और पारंपरिक नृत्य हम महिलाओं द्वारा ही सहेजे जा सकते हैं।

0: हमारे क्षेत्रीय व्यंजनों की रेसिपी और घरेलू उपचार की जानकारी महिलाएं ही परिवार में सुरक्षित रख सकती हैं। व्रत, पूजा पाठ और मौसमी त्योहारों को पूरे विधि विधान से मनाना संस्कृति को दैनिक जीवन में जीवंत रखने में मदद करता है। क्योंकि बहनों, जैसे हमारे घर में आज भी 50 पैसे के सिक्के, 10 पैसे का सिक्का, 1 पैसे का सिक्का, 25 पैसे के सिक्के तक मौजूद हैं। जब हम अपने बच्चों को इन सिक्कों को दिखाते हैं तो इनको देखकर वो बहुत खुश होते हैं। मानो आधुनिकता और तकनीकी के प्रभाव के कारण हमारी कई स्थानीय लोक कलाएं लुप्त होने की कगार पर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ें और लोक संस्कृति के वैज्ञानिक व ऐतिहासिक महत्व को समझें। मानो यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी पारंपरिक संस्कृतियों की रक्षा के लिए महिलाओं की इस भूमिका को महत्वपूर्ण मानती हैं। मैंने हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो चटाइयां बना लेती हैं, साड़ियों से पैरदान बना लेती हैं, दरिया बनाती हैं, जो सामान वेस्ट होता है उससे भी कई ऐसी चीजें बनाती हैं। पंखा, बेना जिसको बोलते हैं, वो भी कई चीजों से बनाया जा सकता है। गत्ते से भी हमने देखा है कि यहाँ बुंदेलखंड में कई लोग बेना बना लेते हैं। तो ये जो हमारी ये चीजें हैं, इनको हमें सहेज कर रखना है। आप चाहें तो इनको एक छोटे से फॉर्म में भी बना सकती हैं, जिसको मिनिएचर फॉर्म कहते हैं, और उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार भी कर सकती हैं। तो ये तो बात हुई प्रचार प्रसार करने की। तो अब हम बात करते हैं बहनों संग्रह की, जो हम आपसे पहले भी कर रहे थे। संग्रह करना महिलाओं को बहुत पसंद है। इसी दिन को खास बनाने के लिए हर साल 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक आदान प्रदान, इतिहास के संरक्षण और संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। जिस तरह हम महिलाएं सहेजने के महत्व को बहुत अच्छे से जानती हैं, ऐसी ही एक महिला है जिनका नाम है किरण नादर, जो कि भारत की पहली निजी संग्रहालय की संस्थापिका है। उन्होंने सन 2010 में अपने निजी संग्रहालय की स्थापना की, जो आधुनिक और समकालीन कला को समर्पित भारत का पहला निजी संग्रहालय बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला को बढ़ावा देना है। किरण नादर कला के अलावा उत्कृष्ट ब्रिज खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने सन 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिज मिक्स्ड टीम के लिए कांस्य पदक जीता था। कला और संस्कृति में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज इसी विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है बुंदेलखंड क्षेत्र के पारंपरिक लोक माध्यम परिचय व महत्वपूर्ण महत्व विषय पर, जिसमें बात की है विभूति सिंह जी ने और भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर जय सिंह, विभाग अध्यक्ष पत्रकारिता विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे इस विशेष भेंटवार्ता के कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारे भारतीय जीवन में कई बार दिन भर में जाने अनजाने हम कई ऐसी रीति रिवाजों और परंपराओं से रूबरू होते रहते हैं जिनके पीछे का इतिहास हमें पता नहीं होता, लेकिन जो बड़ा ही रोचक होता है। ऐसी ही है बुंदेलखंड में लोक माध्यम की परंपरा। तो इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जय सिंह जी, पत्रकारिता विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि पारंपरिक और लोक माध्यम बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या हैं?
2: पारंपरिक माध्यम वो माध्यम होते हैं जो परंपरा से हमको प्राप्त होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आ जाते हैं। लोक माध्यम इसको इसलिए कहते हैं कि ये ज्यादातर इनका प्रयोग जो है लोग करते हैं। लोग का मतलब जन सामान्य लोग जिनमें शिक्षा की कमी होती है, उनका परिष्कार कम हो पाता है, विशेष करके ग्रामीण इलाके के लोग इस तरह की माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। बुंदेलखंड की अपनी अलग, उसका पर्यावरण अलग है, उसकी भौगोलिक धरातल अलग है, उसकी बोली अलग है, उसके नायक अलग हैं, इसलिए बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेलखंड के लोक माध्यम विशिष्टता लिए हुए हैं।
1: अच्छा जयसिंह जी, ये बताइए कि

0: इन पारंपरिक लोक माध्यम का क्या महत्व होता है?
1: पारंपरिक लोक माध्यम जो है, एक तो जन सामान्य लोगों की अभिव्यक्ति होते हैं। जनरली जन सामान्य लोगों का कोई लिटरेचर नहीं होता है, ये जो है ओरली जो है जुबानी रूप से चलते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते रहते हैं, और इनके माध्यम से जन सामान्य लोग अपना जो है सुख और दुख की अभिव्यक्ति देते हैं, अपने सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति देते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव हैं, प्रगति है, विकास है, इसको लेकर के भी चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और जब यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम का, तो ये लोक माध्यमों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भक्ति काल के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उसको रूट लेवल तक लाने का काम जो है इन पारंपरिक लोक माध्यमों ने किया है, और जब राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का चल रहा था तो उसमें इन माध्यमों ने गांव तक स्वतंत्रता की बात को पहुंचाने की कोशिश किया है, और आज भी उनकी रेलेवेंसी है। हम देखते हैं कि जो विकास के काम है सरकार के, वो लोगों तक ले जाते हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ जो है अपनी अभिव्यक्ति भी देते हैं। लोग अपनी जो कला है, अपना सुख है, अपना दुख है, जो उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है उसको प्रस्तुत करते हैं।
0: जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पारंपरिक लोक माध्यम। सर, हमें बताइए कि बुंदेलखंड के संदर्भ में और देश के बाकी के जो क्षेत्र हैं, तो बुंदेलखंड के जो लोक माध्यम है ये किस तरह से भिन्न है दूसरे क्षेत्र के लोक माध्यमों से?
1: जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसके भौगोलिक धरातल से और उसमें पैदा होने वाले नायकों से भिन्न हो जाती है। इसकी बोली भी अलग है, इसका भौगोलिक धरातल अलग है, इसके नायक भी अलग हैं। जैसे यहाँ पे आला उदल पैदा हुए, उनसे संबंधित एक लोक गाथा है आला
0: जी।
1: हरदौल यहाँ के बहुत फेमस है, जो कि लोकनायक हैं, जो कि सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जब शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले हरदौल को जो है औरतें जो है मांगलिक गीत गाते हुए उनको इनवाइट करती हैं
0: जी।
1: इस तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, बताएं कि इस लोक माध्यम की जो परंपरा है इनको संरक्षण देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं?
1: इसकी लोक माध्यमों को संरक्षण देने वाली बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। यूनेस्को इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैकब्राइड रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, जो मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से मशहूर है
0: जी।
1: उसने भी उसमें ये बात ध्वनित होती है कि विकासशील देशों में लोक माध्यमों की बहुत बड़ी भूमिका है, जो विकास के संदेश को, प्रगति के संदेश को, सामाजिक बुराइयों के संदेश को और सामाजिक प्रगति के संदेश को बहुत बाखूबी दे सकते हैं, इसलिए इनकी रेलेवेंसी बनी हुई है
0: जी।
1: साथ साथ जो है हम उनको पर्यटन का बढ़ावा देने में, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विरासत है, खजुराहो की विरासत है, मूर्ति कला है, यहाँ का लोक आल्हा लोक गायन है, आल्हा है, राय नृत्य है
0: जी।
1: और चंदेरी की अपनी जो है विशेष करके एक शिल्प है, डिजाइन है, तो ये हमारी लोक विरासत है और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से हम अर्निंग कर सकते हैं और लोगों को जो है पर्यटन के लिए आकर्षित कर सकते हैं,
0: तो व्यवहारिक उपयोगिता भी इसका
1: उपयोगिता भी है इसमें।
0: अच्छा, मुझे अंत में आप ये बताइए जयसिंह जी कि व्यक्तिगत रूप से आपको इन लोक माध्यमों में सबसे रुचिकर कौन सा लगता है?
1: व्यक्तिगत रूप से मुझे तो दो चीजें बहुत ज्यादा अपील करती हैं। आल्हा है जो कि लोगों में साहस भरता है, और ये जैसा कि हम जानते हैं कि आल्हा को लेखन लिपिबद्ध करने का काम जो है सबसे पहली बार जो है एक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था और उसने लिपिबद्ध कराया था, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आला का जो है स्थान जो है भारतीय मन में ही नहीं विदेशी मनों में

0: भी जबरदस्त उसका प्रभाव रहा है
1: जी।
0: इसके साथ साथ आल्हा विशेष करके महोबा की एक सांस्कृतिक विरासत है और एक लोक गायन है और उसने पूरे उत्तर भारत में लोकप्रियता प्राप्त की है। दूसरा मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हरदौल के भात। मुझे ये लगता है कि इतिहास के पन्नों में हरदौल का जिक्र बहुत कम है, तो उसको जो उसके साथ न्याय हरदौल के साथ यहाँ के लोगों ने कर दिया है, इतिहास के पन्नों में जिसको खत्म कर दिया गया था, भुला दिया गया था, यहाँ के सांस्कृतिक विरासत उसको लेकर के चलती है और हर शादी विवाह में उनके नाम पे जो है निमंत्रण भेजा जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है। तो ये दोनों चीजें मुझको बहुत अपील करती हैं। साथ साथ राई नृत्य जो है सामान्य बहुत सामान्य लोगों के सुख और दुख को व्यक्त करते हैं गायन के माध्यम से, वादन के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से भी। ये लोक अभिव्यक्ति है जो सहज है
1: जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में शोध की बहुत अधिक गुंजाइश है।
0: जी, शोध की बहुत ज्यादा जरूरत है। विश्वविद्यालय ने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने जो लोक माध्यमों को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने भी सम्मिलित किया है। साथ साथ इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो रही है। बहुत सारे लोग जिनको भुला दिया गया था, बहुत सारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, एनजीओ वगैरह भी काम कर रही हैं।
1: जी, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और भी अधिक शोध होगा और जनसामान्य इसमें और अधिक रुचि लेगा अध्ययन की।
0: जी, इसमें कोई संदेह नहीं, जनसामान्य लोग रुचि लेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत भी है और बढ़ाया भी जा रहा है।
1: डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी रोचक जानकारी दी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत।
2: वैनु, स्वागत है आपका। अभी आपने सुनी पुनः प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था बुंदेलखंड क्षेत्र के पारंपरिक लोक माध्यम परिचय व महत्व विषय पर डॉक्टर जय सिंह से विभूति सिंह की बातचीत। बहनों, बातें तो हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: अरे राहुल, ये झूठ का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, झूठ के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे राहुल, ये झूठ का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, झूठ के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: मैनू स्वागत है आपका। मैनू आपको सुनवाते हैं बहुत ही

मैनो भी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म जुगनू से, गायक किशोर कुमार उनके साथ में, लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत एसडी बर्मन का। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। मैनो, पशुओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता हमारी मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बेजुबान जीव हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन वो दर्द, खुशी और डर को बखूबी समझते हैं। उनके साथ प्रेम

पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना न केवल उनका अधिकार है बल्कि एक सभ्य समाज का दायित्व भी है। मनोवैज्ञानिक प्रमाणों से साबित हुआ है कि जानवर संवेदनशील प्राणी हैं, जो पीड़ा और खुशी दोनों महसूस कर सकते हैं। उन्हें भोजन, पीने का पानी और रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भी हमारा दायित्व है। उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण या क्रूरता न करना और यदि कहीं ऐसा होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा कर्तव्य है। मैंने गर्मियों के दिनों में हम अपने घर की छत पर या बाहर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन अवश्य रखें, साथ ही साथ कुछ दाना भी रख सकते हैं ताकि जब वो पानी पीने आए तो अपनी भूख भी मिटा सके। साथ ही साथ यदि कोई घायल या आवारा पशुओं को देखकर हमें अनदेखा नहीं करना बल्कि स्थानीय पशु कल्याण संस्था या एम्बुलेंस से हम सहायता ले सकते हैं। पशु क्रूरता के खिलाफ बने कानूनों और पशु कल्याण से जुड़ी पहलों के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो बहनों, बातें हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन सुन लेते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत फिल्म बादल से। गायिका है अनुराधा पौडवाल, साथ में है जसविंदर नरूला और सुखविंदर सिंह और साथी कलाकार।

मैनू आप सुन रही थी बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म बादल से, गायिका अनुराधा पौडवाल, जसविंदर नरूला, सुखविंदर सिंह और साथी कलाकारों की आवाज में। लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी अब बता चुकी है कि अब 6 बज चुके हैं और हमारा घर जाने का समय हो गया है। तो जल्दी से कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। मैनू आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकती हैं, उस पर अपने कमेंट्स करके हमें हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ भी अपने मैसेज दे सकती हैं।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना मनचाहा कार्यक्रम नारी जगत एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है, संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहनों को रविंद्र भैया की नमस्कार। हम देख रहे हैं कि अपन अच्छे खुशहाली में हुई है और अपने खेती से सुस्ते होके और अपने जो है जो गल्ले पानी की व्यवस्था में लगे हुए हैं और कछु पंच भैया ने अच्छे दाम पे अपने जो है बेच के माल और अपना जो है आय भी बढ़ा ली हुई है। आज भैया बहुत ही खास दिन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ई को जो ही उद्देश्य है भैया कि अपने जो है HIV की रोकथाम के लाने एक सुरक्षित तो प्रभावी टीका जो वैक्सीन है वो की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक करो और अपने जो है जैसे फसल को अपन बीमारियों से बचाओ तो सही समय पर दवाई बीजन को उपचार कराए थे, ऐसे अपने जो सही है भैया वो ऊखो भी गंभीर बीमारियों से बचावे की लाने वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। और जो भ्रांति है अपनी के अपन को जो है छूवे से और साथ में काम करवे से या साथ खावे पीवे से जब बीमारी फैल जाते है तो भैया जाकर भ्रांति है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है ई में। और ई में संकोच ना करें, छूने हाथ में लाने से साथ में जो है काम करने से जब बीमारी नहीं लगत है तो जब भ्रांति से बिल्कुल दूर रहें। और भैया अपनी सजगता से सजगता रखें जीवन में, सजगता ही अपनो जो है बचाव है तो जो है ई एड्स से। तो विश्व जो एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई यानी आज ही के दिन जो मनाओ जात है तो जातो है ई के बारे में चर्चा। और पंच भैया हरों का है कि खास तौर से जोन पंच भैया जो है अपनी आय बढ़ावे के लाने जायद में भी फसलें ले रहे तो उनमें जायद में मूंगफली की फसल जोन पंच भैया ले रहे तो वे जो है सिंचाई और खरपतवार देख ली में कि अपने खेत में मूंगफली के खेत में खरपतवार तो नहीं है और पानी कम तो नहीं दे रहे, यानी हिसाब किताब से जो है पानी देवे का जो तरीका है वो जो ही है कि अपनी जो है फूल आवे के समय जैसे फूल आ रहा हो यदि तो जो है बुआई के जैसे 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया लगभग, तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और सुइयां बनते समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और फली बनते समय 15 से 18 दिनों के अंतराल पर सिंचाई अपन पानी लगा के कह सकते हैं। और ड्रिप विधि से सिंचाई करें, इसे कहा है पानी की बचत होती है और बहुत ही अच्छी बात है कि जो है कम जो है अधिक क्षेत्रफल कम पानी में अपन जो है सिंचित कर सकते हैं। और जोन पंच भैया जो खरपतवार है तो खुरपी लेकर भैया खेत में जाएं और खरपतवार निकालें, वो खास तौर से जो है अगर जैसे और समस्या ज्यादा बेकरार है तो फिर जो है एक दवाई है एमजे थापायर और या फिर पेंडी मैथिलीन 30% ईसी ज्यादा दवाई 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ लेकें और 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव अपन कर सकते हैं। तो इस तरीका से अपन खरपतवार से दवाई एक बार फिर से सुन लो, एमजे थापायर या फिर पेंडी मैथिलीन 30% ईसी दवाई है या 1 से 1.5 लीटर ले 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। तो जोन पंच भैया जो है मूंगफली की खेती कर रहे तो वे ही

0: विकास ने अपनी सिंचाई करें और खरपतवार को नियंत्रण कर लेवे। काहे के समय समय पे जो है अपने ज्ञान वर्धन के लाने, पंच भंजन के लाने और अपनी आय बढ़ावे के लाने हम ऐसी बथकाव ले आउ थे या भेंटवार्ता ले आउ थे जिसे अपन को जो है खेती पाती में अनुभव बढ़े और अपन अच्छी सकुशल तरीके से खेती करके आय बढ़ाए। ऐसी एक भेंटवार्ता सुनवा रहे ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के लाभ एवं कीट प्रबंधन। तो जी हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, सब्जी विज्ञान विभाग, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। तो इनसे बतकाव करो हमारे दीप भास्कर जी ने, तो सुनो भैया को लाभ उठाओ।
1: किसान भाइयों, आप खेती में अलग अलग तरह की फसलें लेते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो खेती में अन्य फसलों के साथ साथ साग भाजी की खेती भी करते हैं और साग भाजी की खेती में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं और ऐसे में किसान भाई ये चाहते हैं कि उन्हें बेहतर से बेहतर जानकारी मिले। तो हम समय समय पर अपने रेडियो के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए तरह तरह की जानकारी लेकर आते हैं और आज हम बात करेंगे जो किसान भाई साग भाजी की खेती कर रहे हैं और इस समय जो फसलें वो अपने खेतों में लगाए हैं उन सब्जी की फसलों में इस समय क्या परेशानी हो सकती है और ज्यादा लाभ लेने के लिए वो अपनी फसलों के साथ क्या करें, इस विषय पर जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के डॉक्टर सौरभ सिंह जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय जो किसान भाई साग भाजी की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों में कौन कौन सी फसलें लगाए हुए हैं।
2: जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं, मेरा सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार, और मैं जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन झांसी है उसका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाने का मौका दिया है।
1: जी,
2: तो मैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में सब्जी विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। तो वहीं पे हम शोध का कार्य भी करते हैं, वहीं पे हम पढ़ाने का कार्य भी करते हैं और दूसरी नई नई जो भी टेक्नोलॉजीज है, तकनीक है सब्जियों के लिए, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और किसान भाइयों को उसके बारे में हम बताते हैं।
1: जी,
2: तो जैसे कि आपने कहा कि अभी हमारा गर्मियों का जो ग्रीष्म ऋतु है, अब इसमें हम अगर सब्जियों की बात करें, क्योंकि अगर हमारा शरीर ताकतवर होगा तो बीमारियों से लड़ने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी।
1: जी,
2: हम कह सकते हैं कि जो सब्जियां हैं उसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है कि जो हमारे शरीर को अच्छी पोषक तत्व देती हैं, हमारे शरीर को सुडोल बनाती हैं और हमारी जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको भी बढ़ाती हैं।
1: जी,
2: तो इसलिए सब्जियों का बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में महत्व है और हमें हर आदमी को रोज आपको 400 ग्राम सब्जी खानी है।
1: जी,
2: अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं, स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको 400 ग्राम सब्जी खानी है।
1: जी जी,
2: तो अगर जब सब्जी खानी है 400 ग्राम तो उसमें एक बात और भी आती है कि जो सब्जी हम खा रहे हैं वो सही हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो।
1: जी,
2: ऐसा नहीं है कि वो सब्जी जो है जो हमारे हानिकारक केमिकल है उनसे ग्रसित हो।
1: जी,
2: तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो किसान भाई अपने घर में, अपनी खेती में खुद अच्छे तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं और इवन जिनके पास अच्छे बड़े बड़े खेत भी नहीं है वो अपने किचन गार्डन बना के सब्जियों की खेती करें।
1: जी,
2: तो आजकल जैसे कि गर्मियों में जब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में हम मुख्यतः सब्जियों की बात करते हैं, एक तो कद्दू वर्गीय सब्जियां आती हैं।
1: जी,
2: जिसमें हमारा लौकी आ जाता है, कद्दू आ जाता है, खीरा आ जाता है, तुरई आ जाती है। ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनका एक बहुत बड़ा फायदा है।
1: जी,
2: ये आप सोचिए कि ये गर्मियों में ही क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि आप देखेंगे जो पानी की मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है।
1: जी,
2: और गर्मियों में हमें ऐसी ही सब्जियां चाहिए कि हमें बोलते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
1: जी,
2: तो हमें क्या है एक जो गर्मी होती है उससे भी बचाती है ये जो सब्जियां होती हैं, तो इसलिए भी इन सब्जियों का बहुत ज्यादा महत्व है। और जितनी भी बड़ी आपकी गर्मियां हैं उनमें जैसे कि आपका, आप देखते होंगे आजकल हम खरबूजा खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं।
1: जी,
2: तो गर्मियों में ही आ रहा है, तो ये भी गर्मियों की ही सब्जियां हैं, बट खाते इसको हम फल की तरह है। तरबूज हो गया है ना, खरबूजा हो गया, खाते हम इसको फल की तरह है। तो ये तो आपके कहे अभी तो ये आपको मिल रहे हैं, आप इसको खा रहे हैं।
1: जी,
2: पर जैसे कि अगर हमें बात करें अभी जो हमारा बरसात का सीजन आ जाएगा, ठीक है, तो बरसात

0: के सीजन में मैं बता दूं कि जो लौकी होता है वो बहुत अच्छा चलता है।
1: जी जी
0: बरसात में लौकी जो है बहुत अच्छी चलती है, जो हमारा जिसको हम घिया भी कहते हैं या बोटल गोर कहते हैं इंग्लिश में बात करें तो।
1: जी जी
0: तो लौकी की सब्जी बरसात में, जैसे कि हम क्या करते हैं, पंडाल जो बनाते हैं हमारे किसान भाई, जो एक आपके चारों तरफ है, आप चाहे जो हमारा बांस होता है उसकी लकड़ी लेके पंडाल बना लें। क्योंकि पंडाल बनाने का एक और फायदा होता है हमारा कि आपको पता है बरसात हो रही है, बरसात में क्या होता है कि कई बार क्या होता है पानी इकट्ठा हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, तो जब हमारा जो पौधा फल लगेगा, जो लौकी लगेगी,
1: जी
0: अगर वो जमीन से जुड़ी हुई रहेगी, टच करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो जमीन से बीमारियां हैं
1: वो
0: वो
1: लग
0: उस
1: जाएंगे।
0: पौधे को लग जाएंगी,
1: जी
0: उस
1: जी
0: फल को लग जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बरसात में जो जून जुलाई का महीना जो होगा उसमें जो भी सब्जियां हम लगाएंगे, हम कोशिश ये करते हैं जो भी हमारी बेल वाली सब्जियां होती हैं उनको हम जो पंडाल सिस्टम बना के उस तरह से लगाएं ताकि जो हम उसको बीमारियों से भी बचा सकें, और ये बहुत अच्छा चलता है उसमें बरसात में।
1: बिल्कुल
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, और बातचीत के दौरान जैसा कि हम आपसे जानना चाह रहे थे
0: जी
1: कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां या और भी सब्जियां किसान भाई
0: जी
1: ग्रीष्मकालीन
0: जी
1: समय में लगाए हुए हैं,
0: हाँ
1: तो कद्दू वर्गीय सब्जियां हो या भिंडी हो
0: जी
1: या और भी बैगन हो,
0: जी
1: जो भी सब्जी लगाए हैं किसान भाई, तो उनसे ज्यादा लाभ लेने के लिए क्या करें और कौन कौन सी बीमारी जो है उनको लग सकती है और उनका बचाव किसान भाई कैसे करें जिससे किसान भाइयों को सब्जियों से ज्यादा लाभ मिल सके।
0: जी जी तो जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो कद्दूवर्गीय सब्जियां हो गई, हमारी भिंडी भी अच्छा चलता है, वो
1: जी
0: हम 2 बार ले सकते हैं, एक खरीफ वाले सीजन में और एक समर वाले सीजन में, गर्मी
1: जी
0: वाले में, मतलब एक लगती है हमारी फेब मार्च के मंथ में लगेगी और एक हमारी जून जुलाई में मंथ में भिंडी लगेगी,
1: जी
0: ठीक है। हमारा तापमान भी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी,
1: बिल्कुल
0: जो आर्द्रता होती है, तो क्या होता है कि ये जो वातावरण होता है ये हमारी जो बीमारियां होती हैं या जो कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है
1: जी
0: उनकी है। तो बहुत ज्यादा कई बार होता है कि हमारा उनका अटैक हो जाता है हमारी फसलों पे, तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, और किसान भाई जो है हमारे उसका सही तरीके से फायदा नहीं ले पाते हैं, या उनकी जो मेहनत होती है कई बार वो भी बर्बाद हो जाती है पूरी की पूरी।
1: जी
0: जैसे मैं कद्दूवर्गीय सब्जी में बात करूं तो इनमें एक बहुत, जो मैं बात करूं, जो मेजर, जो मेन इनका हम कह सकते हैं दुश्मन है, कीड़ा है,
1: जी
0: एक तो है इनमें रेड पंपकिन बीटल इसको कहते हैं, जिसको हम जो लाल कलर का एक जो कीड़ा होता है, ऑरेंज संतरी कलर का अगर मैं कहूं तो एक बीटल टाइप होता है,
1: जी
0: ठीक है। तो ये बहुत ये क्या करता है, पत्तों में छेद कर देता है एक, तो उस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान करता है
1: जी
0: ये जो कद्दूवर्गीय सब्जियों में अगर मैं बात करता हूं तो। और उसी तरह अगर मैं बात करूं भिंडी की, तो उसमें एक आता है तना और फल छेदक,
1: बिल्कुल
0: जिसको हम फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं, या
1: जी
0: इल्ली कहते हैं जिसको हम लोकल भाषा में शायद, तो इल्ली भी कहते हैं, ये तना या फल छेदक। तो
1: बिल्कुल
0: भिंडी में, और भिंडी हो या बैंगन हो, इन दोनों में ये जो तना एंड फल छेदक है ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है।
1: बिल्कुल
0: तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तो जब भी हम कोई भी किस्म लगा रहे हैं, जहां से भी किसान भाई उस किस्म को ले रहे हैं, चाहे भिंडी की है, बैंगन की है, या कद्दूवर की सब्जियों की है, एक तरह से कोशिश ये करें कि अगर उन सब्जियों में उस इन बीमारियों या कीड़ों से लड़ने वाली क्षमता है उन सब वैरायटी में, उस किस्म में, ठीक है, ये तो उस तरह की किस्में हम लगाएं अगर
1: बिल्कुल
0: आपके वहां ज्यादा प्रकोप आता है, ताकि अगर हम प्रतिरोधक किस्में लगाएंगे तो उसका एक लाभ होगा कि हमें जो केमिकल हम स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड या फंजीसाइड जिसको हम कहते हैं दवाई, तो वो हम स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: किस्म क्या होगी, वो प्रतिरोधक होगी, और क्या होगा, वो स्वस्थ भी होगी, जो पेस्टिसाइड या उसके जो हानिकारक ये होते हैं हमें उसका भी हानिकारक इफेक्ट भी नहीं मिलेंगे, मतलब कि हमारे लिए भी स्वस्थ रहेगा, वातावरण के लिए भी स्वस्थ रहेगा, हमारी मिट्टी के लिए भी स्वस्थ रहेगा, किसान भाइयों के लिए भी वो स्वस्थ होगा अगर हम प्रतिरोधक किस्में लगाते हैं,
1: बिल्कुल
0: ठीक। और एक और होता है, जैसे कि लगता है कि शुरू शुरू में तो क्या करें, जो हमारा नीम का आता है अर्क, या नीम के पत्तों का एक तो अर्क निकाल लें, या फिर एक नीम का ऑयल आता है
1: बिल्कुल
0: तो उसका घोल स्प्रे करें, तो
1: बिल्कुल
0: वो भी एक बहुत अच्छी ये है ऑर्गेनिक तरीका है, मतलब वो कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सीधा पेस्टिसाइड या केमिकल पे जाइए, तो
1: जी
0: नीम का जो ऑयल आता है उसको स्प्रे करें आप, पहले ही कर दें, कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है,
1: जी जी
0: आप पहले ही उसका स्प्रे कर दें, ताकि वो लोग, नीम क्या होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वे बीमारियां या कीड़े जो

0: करते हैं उसको नहीं लगते हैं, मतलब ये वो कर सकते हैं। पेस्टिसाइड आपने तब करने हैं जब बहुत ही ज्यादा अटैक हो गया है।
1: जी जी जी,
0: तब उसमें का जाना है हमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई रोग प्रतिरोधी हाँ। प्रजातियां चुने और रोग प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं, रोग प्रतिरोधी जो फसलें हैं उनको लगाएं, जिससे जो कीट हैं या रोग हैं उनमें लगने की संभावना कम रहे। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि नीम के अर्क का प्रयोग किसान भाई कर सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो नीम का अर्क जो किसान भाई डाल रहे हैं या डालना है तो एक टंकी यानी 15 लीटर में कितनी मात्रा नीम अर्क की लें?
0: इसमें सीधा है कि आप क्या करें, नीम के पत्ते लें
1: जी
0: सारे, उसको थोड़ा सा पानी में डालें, फिर उसको थोड़ा सा वो कर दें, क्रश क्रश कर दें या स्मैश कर दें, इसको
1: मसल दें
0: मतलब।
1: बिल्कुल
0: ठीक, तो उसको फिर एक दो दिन रहने दें वैसे ही पानी में, उस पूरे घोल को पानी में रहने दें। जैसे चाहे आपने एक बाल्टी में बनाया है तो पूरा बाल्टी में उसको वैसे रहने दें एक दो दिन, मतलब कि वो सड़ जाएगा, मतलब कि उसका पूरा निकल जाएगा उसमें निचोड़,
1: अर्क निकल
0: हाँ उसका जो अर्क निकल आएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसको 2-3 दिन बाद आप उसको फिर आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ घोल बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें खुद पूरा बना लिया है, पत्तों से लिया है और पूरा खुद बना रहे हैं अपने देसी तरीके से, पूरा एक ऑर्गेनिक तरीका है इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई कि आपको बनाने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं है। आप नीम के पत्ते लें, बाल्टी में मसल के एक दो दिन के लिए रख दें और सीधा खेतों में छान के उसका स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, जिससे कि जो कीट लग रहे हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कोई ऐसा शोध या रिसर्च चल रहा है जो आगे बरसात के मौसम में उससे किसान भाइयों को लाभ हो, या कोई ऐसी प्रजाति विकसित हो रही है जो किसान भाई बरसात में लगा सकें?
0: जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सभी किसान भाई बहनों को, अभी जो खरीफ प्याज है
1: जी,
0: हमें पता है कि जो प्याज की फसल है मुख्यतः हम लेते हैं अक्टूबर नवम्बर के माह में
1: जी,
0: तो फिर जो प्याज मिलता है हमें मार्च फेब में हमें प्याज मिलता है। बट आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा दिवाली का त्यौहार जब आता है या सर्दियों में जैसे अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है या दिवाली के आसपास, प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं कई बार
1: जी।
0: तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम प्याज की फसल हमारी आ नहीं रही होती कहीं से, क्योंकि उस टाइम तो हम लगाए होते हैं
1: जी।
0: तो खरीफ प्याज की मैं बात करूंगा कि खरीफ प्याज जो है हमारा, जैसे इसमें कुछ किस्मों के अगर मैं नाम लूं जो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है दिल्ली में, वो इस पे शोध करता है, उन्होंने कुछ किस्में विकसित की हैं, जैसे कि एक है एडीआर एग्री फाउंड डार्क रेड
1: जी,
0: ठीक, एक है N53, ठीक है N53। तो ये दो किस्में जो हैं मुख्यतः बहुत ज्यादा यूज होती है खरीफ प्याज में। तो हमारे विश्वविद्यालय में भी इस तरह की किस्में ADR N53 या दूसरे जो इंस्टीट्यूट की किस्में हैं उनको हम अपने विश्वविद्यालय में इवेल्युएट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कौन कौन सी किस्में उसकी जो हमारे बुंदेलखंड रीजन में किसानों के लिए लाभदायक रहेंगी और हमारे किसान भाई उससे लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि किसान भाई खरीफ में भी यानी बरसात के मौसम में भी प्याज तैयार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आगे जो जून जुलाई का महीना आ रहा है
0: जी,
1: इस महीने में बरसात के मौसम के लिए किसान भाई कौन कौन सी जो सब्जी है वो तैयार कर सकते हैं जिससे उन्हें बरसात के मौसम में फायदा मिल सके?
0: जी, बरसात के मौसम जैसे हमने पहले ही बात कही कि एक तो हमारा एक लाल चुलाई आता है
1: जी,
0: जो पत्तेदार सब्जी है, और एक मैं कहता हूँ अगेती फूलगोभी, ये दो चीजें। तो किसान भाई अगर इनको भी अपने जो फसल चक्कर में लगाएं, अपने खेतों में लगाएं, तो इनसे फायदा ले सकते हैं, क्योंकि जो लाल चुलाई है, ठीक है, वो हरी चुलाई और लाल चुलाई दोनों तरह की आती है। तो ये भी जो हमारा गर्मियों में जैसे कि आजकल या आगे चल जाता है पत्तेदार सब्जी है, तो इसका एक फायदा ये है कि लाल चुलाई इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा लाभदायक है।
1: अच्छा।
0: जो हमारी आप कह सकते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं इवन उससे लड़ने के लिए भी ये लाभदायक है
1: जी।
0: जो ये लाल चुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो एमरंथ कहते हैं। तो इसका ये पत्ते जो खाते हैं हम इसके, तो पत्ते जो है इसमें लाल कलर के पत्ते में, तो लाल कलर में जिसमें एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि किसान भाई जून जुलाई में यानी खरीफ के मौसम के लिए लाल चौलाई, हरी चौलाई और खरीफ की प्याज की जानकारी भी आपने दी। अगेती फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान भाई।

0: आपकी जानकारी से आशा है कि लाभ लेंगे। डॉक्टर सौरभ सिंह जी, आपने ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के लाभ एवं कीट प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद करता हूँ मैं भी सभी किसान भाइयों बहनों का।
2: किसान भैया हर वे सुन रहे थे अपन जब भेंट वार्ता ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के लाभ एवं कीट प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर सौरभ सिंह जी हैं सब्जी विज्ञान विभाग रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। इनसे बतकाव कर लेते अमरदीप भास्कर भैया, तो ये जो बतकाव को अपन निश्चित लाभ उठाएं। और कहे कि जोन पंचभैया जो है पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं तो कृषि वानिकी अपनाएं अपन, और पेड़ पौधा लगा के अपन जो है हरो भरो करें अपने खेत को और अपने जो है वातावरण को। और ये में कहे कि दोहरे फायदे हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य के लाने वरदान होते हैं। कहे जो अपने पेड़ पौधा होते हैं इनकी पत्तियां सड़ गल के जो है अपने को खाद बना देती बाद में, तो जीवांश कार्बन भी बढ़ाते हैं खेत में। और पेड़न की जो गहरी जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, जिसे तेज हवा या बारिश जब बरसात में होते तो मिट्टी को कटाव नहीं होते। और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच के जो मिट्टी में जमा कर तो नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती हैं। जल संरक्षण में सहायक होती हैं, जो है जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि करती हैं। ऐसे के जो है छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिससे बारिश को पानी इकट्ठा होकर और भूजल को स्तर बढ़ाऊ थे, नमी संरक्षण होते। और बाष्पीकरण होवे से भैया का है का खास तौर से पेड़न से बाष्पीकरण होते जिससे जमीन में लंबे समय तक नमी बनी रहते। और हवा की गति को कम कर देती जिससे अपन को फसल सुरक्षित रहते खेत की। और ईंधन भी देती लकड़ी भी, और फलदार वृक्षण में तो फल देती हैं। और पशुअन को हरो चारों में भी योगदान ही को होते है। तो ये तरीका से अपन को कृषि वानिकी जो है अपना के और खास तौर से जो है अपन को करने है पेड़ पौधा लगाने है, गड्ढा वे खोद लेने मई में जो ही महीना में, और अपने रूपित कर देने जुलाई में बरसात में, यदि बरसात हुई है तो उन्हें अपन को पेड़ पौधे को रोपण करवो बहुत ही जरूरी है। और अब सुनते हैं भैया जो संदेश।
3: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितनी पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
4: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
5: अरे सच में भैया?
4: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
2: हाँ, तो भैया जब सुन रहे थे जो संदेश और कितनो ज्ञान वर्धन था भैया, ई को ध्यान रखे अपन और सुनत रहे गुनत रहे संदेशन को। और भैया देखो मनोरंजन की बारी है, अब सोच रहे हैं कि रविंद्र भैया कोनो गीत संगीत की बात नहीं कर रहे, तो सुनो भैया जो रसिक लोक गीत भैया गाय वाले भैया है रतन लाल कुशवाहा, इनके संगी साथी तनिक इत आइयो सुगर नैनो वारी।

अबे सुन रहे थे अपन पंचविहार जो रसिक लोगी गाँव वाले भैया थे रतन लाल को सुहावा इनके संगी साथी और जो उन पंच भैया को जो है अपने पशु पाले हैं भी खास तौर से पर रोग राय को ध्यान जरूर देवे जैसे गिल्टी रोग के बारे में जो है अगर जानकारी लगे तो भी उनके लक्षण देख ले में तेज बुखार गले में छाती गले छाती या पेट के नीचे गिल्टियां वो खून बहना मुख व नाक से है और पशु हाँफने लगता है सांस लेने तकलीफ होते है तो इनमें का है बहुत ही रिस्क हो जाते है या पशु मर भी सकत है तो खास तौर से दुधारू पशु को दूध देव बंद कर देते हैं तो टीकाकरण ही को मुख्य रूप से बचाव है और प्रकृति के संतुलन के लाने जो है सृष्टि का आधार है पशुओं से प्यार खास तौर से प्रकृति के संतुलन बनाए रखो के लाने अपन जो है खास तौर से पर्यावरण जलवायु के लाने खास तौर से पेड़ जरूर लगाएं और अपन पशुओं के प्रति जो है क्रूरता उदासीनता ना बरतें ये भी प्रकृति को आधार है खास तौर से अपन जो है इनसे जो है पुरानी मान्यता के अनुसार जो है अपन इन्हें चींटी खो भी और अपने इनको जो है गाय कुत्ता कौआ सब को खाना देते तो खास तौर से इन पर दया भाव रखें और खास तौर से इन्हें कछु पंच भैया ऐसे भी हैं कि जो जो है अपने छत बालकनी में पक्षी पानी भी धर देवे और दानो ही रख देवे तो उनकी प्रति जो है बहुत दया और करुणा रखें जिससे अपन को जो है मानसिक शांति मिले और बहुत ही जो है बेजुबान जानवर को मदद करके मूक जानवर को और अपन अपनी आत्मा की शांति कर सकते हैं। तो भैया जो आती चर्चा आज की तो अपन जो है कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है तो पता सुई नोट करो कार्यक्रम चौपाल द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी पिन कोड नंबर है 284128 और एक संज्ञा अनुमति दो रविन्द्र भैया को नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना मनचाहा कार्यक्रम चौपाल एफएम 103 पर, यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको हम अवगत कराते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त

आपसे कुछ ही पलों बाद संध्या 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। संध्या 7:19 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार एवं संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य वार्ता आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से। खुशबू माटी की लोक बुंदेली लोकगीतों पर आधारित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रमों को। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या तत्पश्चात रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक बार पुनः विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी मुंबई केंद्र से। फोन इन फरमाइसी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो झांसी आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11:00 और 11:05 पर।

बजकर के 35 मिनट हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म एतवार से, कुमार सानू और सुजाता भट्टाचार्य का गायक स्वर, नासिर फराज के लिखे बोल हैं और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म आसपास से, लता मंगेशकर का गायक स्वर, आनंद बख्शी की शब्द रचना और लता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। इसी क्रम में आइए आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट से अमाल मलिक, अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार की आवाज में इस गीत को। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत निर्देशन अमाल मलिक का है।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरा पन्ना से। इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गायक स्वर में, संगीत निर्देशन RD बर्मन का था और इस गीत को कलमबद्ध किया था आनंद बख्शी ने।

0: www.jj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: भैया कछु अनमने दिखा रहे, क्या बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: है अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करने के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

0: नंबर है 0510023200068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना होए हमारे किसान भैया परेशान।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोई मिल गया से इस गीत को उदित नारायण अलका याग्निक के गायक सुर में। गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत निर्देशन था राजेश रोशन का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म जब प्यार किसी से होता है। मोहम्मद रफी का गायक सुर, हसरत जयपुरी के लिखी बोल हैं और संगीत निर्देशन शंकर जैक।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया अब।

0: मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जय हो से शान और श्रेया घोषाल की आवाज में इस गीत को, साजिद वाजिद का संगीत निर्देशन और शब्द रचना समीर अंजान की। कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, सुनिए फिल्म केसरी से।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 7:19 होने को है। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
0: कहाँ
2: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओ लवली, वेल डन,
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की

0: घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत
2: परिषद के दौरान 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रूपये पर सहमति प्रदान की गयी। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेन्द्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।

0: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देशभर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। का प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: Hey guys! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: इस द पार्टी। Yes! चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV

0: इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: के लिए तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाई फाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाई फाई
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
0: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
10: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
9: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
10: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
9: आप कौन?
8: RBI कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: FM 103 पर आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से स्वास्थ्य वार्ता।
12: एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसको आने पर क्या करना चाहिए, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे इसको हम अपनी लाइफस्टाइल से इससे बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार साहब हैं, जो किंग जॉर्जेस मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद
12: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इसी पर आते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है।
13: जैसे हार्ट अटैक के समय तो मरीज को दर्द महसूस होता है, तो वो तुरंत उस सिम्टम को समझ पाता है और बता पाता है और इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। ब्रेन स्ट्रोक उसमें क्या दिक्कत होती है कि मरीज में आमतौर पे 3-4 तरह के लक्षण होते हैं, जिसमें कि मरीज में आवाज में बदलाव आ जाए या मरीज में किसी अंग में कमजोरी आ जाए या मरीज में होश में कमी हो जाए, तो मरीज जो है किसी को बता नहीं पाता है और अटेंडेंट को भी सुबह तक पता नहीं चलता है, तो उस वजह से जो है इलाज या डॉक्टर के पास जाने में देरी हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक अगर दिमाग में जो खून की नसें ब्लड की सप्लाई ले जा रही हैं, तो वो अचानक से उसमें कोई कमी आ जाए, चाहे वो खून का थका जमने की वजह से हो या फिर धमनियां फट जाए उसकी वजह से हो और ब्रेन का कोई भी हिस्सा इस तरह से प्रभावित होता है, तो उसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक करीब 80-85% मरीजों में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो कि 15-20% में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो खून का प्रभाव वाली खून की नलियां हैं उसमें अंदर से रुकावट आ जाए, जिससे कि आगे के हिस्से में कोई ब्लड ना जाए। हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नलियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो वो फट जाती हैं। फटने की वजह से खून का रिसाव ब्रेन में चालू हो जाता है और जो ब्रेन का हिस्सा है वो भी डैमेज होता है, और खून की धमनियों में जब खून इकट्ठा हो गया तो आगे का ब्लड भी रुक जाता है और आसपास जहां जहां ब्लड जाएगा वो हिस्सा भी डैमेज हो जाता है। तो दोनों में डैमेज तो ब्रेन का हो ही रहा है, लेकिन दोनों में कारण जो है थोड़े से अंतर में है।
12: डॉक्टर साहब, इसमें ज्यादा डैमेज किसमें होता है अगर उसको समय से इलाज मिल जाए?
13: देखिए, इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है, जो ब्रेन में खून की जो सप्लाई जा रही है वो एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन दो तरह से खून की नसें जो हैं वो अंदर जो है खून की सप्लाई ले जाती हैं। तो मुख्यतः एक खून की नस जितनी एरिया में ब्लड की सप्लाई करेगी उतने एरिया को ही अगर उसमें रुकावट होगा तो डैमेज होगा। तो अलग अलग हिस्सों में जो सबसे बड़ा हिस्सा जो हम कहते हैं वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का एरिया होता है, जिसमें अगर वो पूरी आर्टरी अगर शुरुआत में ही अगर बंद हो जाती है तो पूरे ब्रेन का एक तरफ का हिस्सा, दाहिने तरफ या बाएं तरफ का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त होता है और उसकी सूजन की वजह से वो अगले तरफ के ब्रेन के हिस्से को भी दबाने लगता है, डैमेज होने लगता है और होश में कमी आने के साथ में मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। अगर ब्रेन को समझा जाए तो ब्रेन में दाहिने और बाएं तरफ जो ब्रेन के काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी के साथ साथ

0: इनके कई सारे हिस्सों के काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर अचानक आंखों की रोशनी में कोई फर्क आ जाए तो वो भी एक लकवे का प्रकार हो सकता है। अगर आवाज की लड़खड़ाहट के साथ में अगर किसी को चलने में डगमगाहट हो जाए तो जो सेरिबलम हमारा ब्रेन का हिस्सा होता है तो उसकी वजह से भी आदमी में होश तो रहता है, आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट पर महसूस होती है, लेकिन चलने में बहुत डगमगाहट होती है। ये भी लक्षण जो है वो स्ट्रोक ही है। लेकिन कोई भी चीज अगर अचानक किसी मरीज में हो रही है तो उसको स्ट्रोक मानते हुए उसका डॉक्टर से उपचार के लिए जरूर जाएं।
1: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले करना क्या हो?
0: देखिए, अगर किसी भी मरीज में इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जो अपने आसपास के चिकित्सक हैं या फिर जो भी नियरेस्ट अस्पताल हैं वहां जरूर पहुंच जाएं। वहां पहुंचने पे डॉक्टर

0: समय के बाद रिकवरी भी पॉसिबल होती है ऐसे पेशेंट्स में।
1: हाँ, इलाज को अगर हम देखें तो शुरुआती इलाज में तो जैसे मैंने बताया कि 4.5 घंटे के अंदर इस्केमिक स्ट्रोक में आप थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी अस्पताल के अंदर जब शुरू में मरीज 10 दिन जब रहता है, उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, दिमाग में सूजन कम हो जाए उसके लिए दवाइयां देना, ये सब प्रक्रियाओं के बाद जब मरीज एक बार डिस्चार्ज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसमें जो है पूरी सुधार नहीं होती, जिसमें खासकर लकवा या कमजोरी चीज रहती है, आवाज में बदलाव रहता है। तो आगे दवाइयों के साथ में स्पीच थेरेपी का रोल भी रहता है, जिसमें धीरे धीरे करके जो स्पीच में रिकवरी है उसके लिए गाइड किया जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ में फिजियोथेरेपी का भी रोल रहता है, जिसमें कि कैसे एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे जब दिमाग में न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज उसका सही होगा तो हाथों में जो कमजोरी जब इम्प्रूव करे तो हाथ में पैर में जो जोड़ है वो बिल्कुल जम ना जाए, गांठें जो है अकड़ ना जाए, इसके लिए फिजियोथेरेपी करते रहना जरूरी है ताकि हाथ और पैर मुलायम रहे और जब ताकत आए तो आदमी चल पाए या अपने डेली रूटीन के काम कर पाए।
0: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए ब्रेन स्ट्रोक पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ब्रेन स्ट्रोक के लिए अब हमारी जैसे दिनचर्या होती जा रही है तो उसमें कई सारी बीमारियों के कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे आप माइग्रेन ले लीजिए, एपिलेप्सी ले लीजिए, आप स्ट्रोक ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज तो जरूर घूमें टहलें एक्सरसाइज करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आपका शुगर कंट्रोल रहे। दूसरी चीज जो है, आप 6 महीने पे या 1 साल पे अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराते रहें, शुगर चेक कराते रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये दो चीज ऐसी है जिसको आप ना करें सेवन तो आपके जीवन में हर तरह से वो अच्छा है। इसके अलावा नींद, तो रात में समय पे सोना और एक अच्छी नींद लेना, कम से कम 6 से 7 घंटे की अगर रात की आपकी नींद होती है तो आपका दिमाग भी चुस्त दुरुस्त रहेगा, इन बीमारियों से भी बचेंगे और घर में भी जो भी आपका पारिवारिक जो संबंध है, लोगों से मिलना जुलना है, वो भी एक हंसमुख प्रभाव में रहेगा।
0: तो डॉक्टर नीरज कुमार साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और ब्रेन स्ट्रोक पर एक लंबी चर्चा में आपने भाग लिया और जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं वो निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप ब्रेन स्ट्रोक कारण, लक्षण और उपचार विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कार्निया की समस्या और निदान, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।
3: आज कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, KGMU लखनऊ में। डॉक्टर अरुण, आज के इस कार्यक्रम में आपका

0: स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ये तो शरीर के सारे अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया का जो रसा स्वादन है, उसका जो दर्शन है, हमें आंख कराती हैं। इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं अगर आंखों में आ जाती हैं तो जिसका समाधान अगर विशेषज्ञ के पास जाकर के जल्दी नहीं कराए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसी ही एक बीमारी है कार्निया। कार्निया की समस्या और समाधान, यह है हमारे आज का विषय जिस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर, इससे पहले कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका समाधान क्या है, कि कार्निया है क्या बेसिकली?
1: जी, जो कार्निया है इसको आम भाषा में लोग पुतली भी कहते हैं। तो ये कार्निया जो होती है एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर होती है। तो हमारे जो 5 सेंसेस भगवान ने हमको दिए हुए हैं उसमें एक सेंस है आंखों से हम लोग 85% चीजें सीखते हैं। रही बात क्या कहते हैं कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक छोटा सा पतला स्ट्रक्चर होता है जो 0.5 मिलीमीटर आप कह सकते हैं, ये आंख

0: का मेन काम जो है वो रेज को फोकस करना, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए बड़ा है कि अगर मान ली किसी की पुतली सफेद हो गई या किसी वजह डैमेज हो गई तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, उसको दिख नहीं पाएगा। पुतली का जो न्यूट्रिशन होता है वो टीयर फिल्म से मिलता है, तो पहली बीमारी तो तब हो जाती है जब आपकी आंखों में मतलब टीयर का सिक्रेशन कम है, जिसको ड्राई आई बोलते हैं। ड्राई आई कई तरीके की होती है, मतलब सिंपल भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। जो सीवियर ड्राई आई होती है वो क्या कहते हैं कि बहुत खराब होती है, इसमें दर्द, लाली, ये सब चीजें होती हैं। प्लस एक चीज और भी कॉमन होती है ड्राई आई से रिलेटेड, कि इसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो जब आदमी पढ़ाई कर रहा होता है या किसी जॉब में होता है और टीवी स्क्रीन के सामने होता है, उसको 6 घंटे काम करने, तो वो टकाटक आंख लगाए रखता है और वो पलक ब्लिंक नहीं कर पाता। जब ब्लिंक नहीं कर पाता तो कॉर्निया को टीयर फिल्म नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उसको ड्राई आई हो जाती है। और एक समस्या होती है ट्रामा की, तो ट्रामा जो है पुतली में दो तरीके से होते हैं। एक तो ऐसा ट्रामा होता है जिससे आंख में छेद हो जाता है, कट जाता है, या एक ऐसा होता है जिससे मान लीजिए फार्मर भाई लोग हैं हमारे, उनके पत्तियों से चोट लग गई है, वेजिटेटिव ऑर्गन से मतलब लकड़ी की बनी हुई किसी भी चीज से चोट लग गई, तो उससे फंगल अल्सर हो सकता है। तीसरी बीमारी ये होती है कि अगर पुतली का, जैसा मैंने बताया कि काम होता है रेज को फोकस करना, यदि ये रोज रेज को पहले फोकस कर देती है पुतली से तो उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, यदि उसके बियॉन्ड अगर फोकस कर देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया।
1: इसके शुरुआती जो लक्षण है वो कौन कौन से?
0: पुतली की बीमारी में सबसे बड़ा लक्षण तो आपको ये आएगा कि आपको आंख में डिस्कम्फर्ट लगेगा, पेन होगा और देखने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपको चीजें धुंधली धुंधली दिखेंगी और पलकों में स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा। तो ये सब इसके मतलब एक सिम्टम अगर पूछा जाए तो एक सिम्टम जो है वो उसको कम दिखेगा।
1: अच्छा,
0: ये बहुत खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुतली अगर मान ली किसी की सफेद है, वो एक ही आंख उसका काम करा, दूसरा नहीं करा, डीएल नहीं बन सकता उसका, उसको रोड क्रॉस करने में भाई दो आंख से क्या होता है, आप जब दो आंखें होती हैं इंसान के पास तो वो डेप्थ को पहचान पाता है, जब उसके पास एक आंख होती है तो डेप्थ को उसको एक्सेस करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो पुतली वैसे भी शरीर में है तो परेशानी तो करती है, लेकिन इसमें आपकी लर्निंग भी मतलब काफी अफेक्टेड हो जाती है।
1: अच्छा, इसमें उम्र का भी कोई मसला है क्या?
0: जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी माताएं हैं हमारी ऐसी जो कमजोर होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पुतली की बीमारियां जन्मजात होती हैं, जन्मजात ग्लोकोमा होता है, जन्मजात मोतियाबिंद होता है।
1: अच्छा,
0: ये सारी बीमारियां होती हैं, तो बचपन में भी होती हैं। आप जो लोग घर के बाहर रहते हैं, स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, कारपेंटर्स हो गए, खेत में काम करने वाले लोग, जो लकड़ी में चोट लगने की संभावना बहुत होती है, आप देखिए सबके पास फोन है ही है, वो मतलब हमेशा फोन लेके चला, सारे रील्स पे रील 3 घंटे 4 घंटे देख रहा, तो उससे ड्राई आई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी परेशानियां बहुत ही बाहुल्य रूप में हमारे देशों में देखी जा रही है।
1: किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि ये बीमारी ना आए?
0: देखिए, जैसे कोई हम 6-7 घंटे काम करता है उससे ये बोलते हैं कि जब भी आप काम करिए तो 20 मिनट काम करने के बाद 5-10 सेकंड के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए या बीच में ब्लिंक करते रहिए, ठीक है। और दूसरा क्या करें, जो लोग हमारे मतलब गाड़ी चलाते हैं, फार्मर्स हैं, तो वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस मतलब यूज करें। प्लस क्या कहते हैं, जो ड्राई आई की समस्या है उसके लिए आप जो गैजेट यूज कर रहे हैं या गैजेट पे समय ज्यादा बिता रहे हैं उसको कम होना चाहिए, या फिर उसको डॉक्टर के सुपरविजन से पूछे कि कितने देर कर सकते हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो बहुत जरूरी तो कितने देर में ब्रेक लेना चाहिए, और क्या क्या हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे रेड चीजें और ग्रीन चीजें, अनार, गाजर, पपीता होना चाहिए, ये तो खान पान में ध्यान रख सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। तो इन सब चीजों से तो आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्लस आपकी बॉडी में जो टीयर फिल्म की क्वालिटी होगी वो भी काफी अच्छी बेहतर होगी।
1: कॉर्निया का प्रत्यारोपण भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल, इस समय तो सिटी में सबसे ज्यादा कॉर्निया का प्रत्यारोपण मैं ही कर रहा हूँ। पुतली होती है 5 लेयर थिक होती है, तो जिसको ऊपर के लेयर की प्रॉब्लम होती है उसको हम ऊपर की लेयर लगा सकते हैं, जिसको नीचे की लेयर की प्रॉब्लम होती है उसको नीचे की लेयर लगा सकते हैं। तो जो ऊपर की लेयर की जो ट्रांसप्लांट उसको बोलते हैं डार्क डीप एंटीरियर लैमेलर क्रेटोप्लास्टी, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डेस्मेट स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल क्रेटोप्लास्टी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि चोट लग जाने के बाद उसकी सफेदी आ जाती है, तो वो सफेदी को हटाने के लिए हम लोग उसको फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। इंडिया में करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि पुतली सफेद है चोट की वजह से, कई सारी वजह से। कारण यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 1 लाख ट्रांसप्लांट प्रति वर्ष हो, पिछले 40 साल से चाह रही है, और हर साल कभी 25,000 होता है, कभी 30,000 होता है। तो ये जो 22 लाख का नंबर है इसमें करीब हर साल 30,000 और 50,000 नंबर इसमें बढ़ता चला जाता है। तो हमारे वहाँ एक और डाटा है जिसमें ये कहा जाता है कि 1,000 पॉपुलेशन में 7 डेथ होती है। यदि आप ये निर्णय ले लें कि हम डेथ के 6 घंटे के अंदर आई बैंक को इन्फॉर्म कर दें, तो पुतली मतलब आई बैंक की टीम ला सकती है और जो लोग वेट करें उनको प्रत्यारोपण कर सकती है। बहुत ही आसान सा तरीका है, जिस शहर में आप रहते हैं उसका कोड

0: जैसे लखनऊ में है 0522 और उसके आगे 1919, ये नंबर लाके आप डायल कर दिए किसी भी इंडिया में कहीं पे रेस्पेक्टेड आई बैंक को पहुंच जाएगा, हमारी टीम आ जाएगी, कॉर्निया ले जाएगी, जिसको प्रॉब्लम होगी उसको लगा।
1: अच्छा, इस कॉर्निया कोई नई तकनीक भी आ गई है क्या?
0: हम एक पुतली से दो लोगों को लगा सकते हैं, तो मतलब कि एक आदमी से चार लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो यही रहती है ना कि अगर हमको पुतली तो मिले, क्योंकि डेथ के बाद क्या कहते हैं लोग याद ही नहीं करते हैं बताना, तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो एनजीओ उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगी। डेथ के 6 घंटे के भीतर यदि आपने 1919 नंबर पे अगर डायल कर दिया, उसके पीछे अपने डिस्ट्रिक्ट का एसटीडी कोड लगा के, तो आप बहुत बहुत अच्छे काम करेंगे और आप किसी ना किसी की भला कर पाएंगे।
1: इस समय आपकी इस बातचीत को डॉक्टर सारे लोग सुन रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, हम बिल्कुल ये संदेश अच्छे ही देना चाहेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सारी ऋतुएं होती हैं, तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ताकि आपके शरीर का अंग सारे काम करें और अपने आंखों बचाएं, बच्चों को अगर फोन पे बहुत लगे उनको समझाएं कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो आंख की बीमारी से, पुतली की बीमारी से आप बच सकेंगे, और अगर होगी भी तो बहुत कम मात्रा में होगी।
1: कार्निया की समस्या और समाधान, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप आए और बहुत ही सारगर्भित बातें आपने कार्निया से संबंधित सुनने वालों तक पहुंचाई है। आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्निया की समस्या और निदान, इस विषय पर अभी आप प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं
3: FM 103 पर, यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खुशबू माटी की, बुंदेली लोकगीतों का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और आपको हम सुनवा रहे हैं प्रेम नारायण व साथियों के गायक सुर में ये लोकगीत।
4: देखी भाली सब तरह से मची।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुशबू माटी की, बुंदेली लोकगीतों का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको हम सुनाते हैं रामनाथ अहिरवार की आवाज में ये लोकगीत।

0: है भैया, कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
1: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: है अपन को भैया पता नहीं, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया परेशान।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: मुंदरी लोक गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम को।

आज के हवा महल में प्रस्तुत है झलकी, ये भी खूब रही। लेखक उर्मिला मिश्रा, निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर।

0: इतनी जल्दी हो आए दोस्त के घर?
1: मैं तो तुमसे कहकर गया था कि फटाफट लौट कर आता हूँ। तुम्हारी याददाश्त का इस उम्र में ये हाल है तो हमारी अम्मा की उम्र तक पहुँचोगी तब क्या होगा?
0: होगा वही जो होना होगा। जब कुछ और नहीं बोलने को तो लगे मेरा मजाक बनाने। जरा बताओ तो, तुमने मुझे कब कहा था जल्दी आने को?
1: हे भगवान, इसका मतलब तुम्हें दूसरी

0: हे भगवान, इसका मतलब तुम्हें दूसरी बात भी नहीं याद होगी। क्यों?
1: दूसरी बात? ये दूसरी बात कौन सी है? मैं कहती हूँ अगर दोबारा ही कह दोगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा, आखिर इंसान हूँ, भूल गई होंगी।
0: अब आई ना रास्ते पर, यही तो मैं चाहता था कि अपनी गलती मानो, वरना तुम औरतें बोले चली जाओगी, घंटों बहस करोगी पर अपनी गलती नहीं मानोगी।
1: अरे बाबा, अब तो मान लेना गलती, अब तो बोलो ना,
0: फटाफट तैयार हो जाओ, गुप्ता जी के घर जाना है।
1: याद आया, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में।
0: जी हाँ, वही जाना है। पार्टी तो बस कहने की बात है, यूँ समझ लो हम तुम उनके खास लोगों में हैं।
1: सो तो है।
0: हाँ, लेकिन ये सोच कर चलो कि पार्टी में नहीं डिनर में जाना है। अरे 6 बजे का समय और 5:15 बज चुके हैं।
1: अरे लेकिन मैं खाली हाथ जाऊंगी, मैंने तो कुछ मंगवाया भी नहीं।
0: कुछ मंगवाया भी नहीं, बस हिला दी 2 टके की जबान। हे भगवान, पत्नी मिले तो पत्नी जैसी, नहीं तो
1: नहीं तो क्या, जरा फिर से तो कहो।
0: क्या कहूँ, अजी लानत है अपनी अक्ल की, दुनिया भर की बीमारियों का इलाज करता हूँ किताब पढ़ कर, और तुम्हारे भुलक्कड़पने के इलाज की याद नहीं रहती। ठीक है, हंस लो, जब ओखली में सर डाला तो मूसलों से क्या डरना। जाता हूँ पर कहाँ जाऊँ, क्या अकल हूँ, अरे कितने का लाऊं।
1: अरे वैसे तो बड़े अकल वाले बनते हो और इतनी जरा सी बात मुझसे पूछते हो, जैसी रकम हो जेब में और जिस डिग्री की दोस्ती हो वैसा ही प्रेजेंट ले आओ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात मानो तो ये प्रेजेंट का चक्कर रहने दो, बढ़िया से लिफाफे में रखकर पूरे 5 रुपए का नोट दे दूंगी।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़ा खूबसूरत लगेगा ना। अजी डॉक्टर का बेटा है तुम्हारे नौकर का, नहीं आखिर अपनी भी तो कुछ इज्जत है।
1: अजी तो कौन मना करता है, जाइए जितना जी चाहे लुटा आइए, यहाँ मैं महीने भर से 1 जोड़ी चप्पल के लिए हिर आ रही हूँ, इस पर ये महीने का आखिर, कहाँ से लाऊं रोज रोज लोगों को देने के लिए बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा धंधा बना लिया है लोगों ने, जितना खिलाते पिलाते नहीं उससे चौगना तो वसूल कर लेते हैं।
0: और जब अपने छटूले की हैप्पी बर्थडे मनाती हो तब
1: क्या, मेरा तो एक ही है, साल में एक ही बार तो लेती हूँ सबसे, लेकिन यहाँ तो लोगों की 4-4, 6-6 हैं, अगले महीने फिर तैयार रहना गुप्ता जी के घर कुछ देने को। अजी तुम लोगों का क्या, ये तो हमारे दिल से पूछो, ये कितनी महंगी पड़ती है दूसरों की खुशियाँ।
0: लेकिन पहुँचने के बाद तो खूब खीसे बघार कर कहती हो हैप्पी बर्थडे।
1: वो तो एक्टिंग करती हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे, अजी तुम क्या जानो, ज्यादातर लोग ऐसी ही छोटी खुशी दिखाते हैं। भूल गए उस दिन मिसेस कटारा कैसे कह रही थी, जाने कहाँ से चल गया है हैप्पी बर्थडे का चलन, मुँह अंग्रेज चले गए पर अपनी मूंछ के बाल यही छोड़ गए इस अंग्रेजियत के रूप में।
0: लेकिन मानो या ना मानो, ये अंग्रेजियत का भूत तुम औरतों पर ही सबसे ज्यादा चढ़ा है, अंग्रेजी की ABCD नहीं लिख पाएंगी लेकिन हैप्पी बर्थडे जरूर गाएंगी। अरे ये भी कोई तरीका है कि जन्मदिन जैसे शुभ दिन पर जलती ज्योति बुझाई जाए।
1: अब बाजार भी जाओगे या यहीं खड़े खड़े भाषण देते रहोगे?
0: जाता हूँ लेकिन अब तो देर हो ही गई, थोड़ी देर और सही। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमारी अम्मा।
1: अरे बस हमारी अम्मा अजी उनके गुणगान बाद में गा लेना। हाँ, पहले
0: साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारी अम्मा की तारीफ तुम्हें सुहाती नहीं, उनकी बराबरी कर लेना तब कहना।
1: मुझे नहीं करनी उनकी बराबरी।
0: हाय, क्या धूमधाम से मनाती थी वो हमारी सालगिरह। नए कपड़े, माथे पर तिलक, मंगल दीप, पूजा पाठ, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे हम लोग। आजकल के बच्चों की तरह माँ बाप से तय नहीं करते थे कि आपकी बर्थडे पर ये देना वो देना।
1: ओहो, मुझे तो लगता है आज तुम ऑफिस से भांग खा कर आए हो, अभी तो इतनी जल्दी थी और अब।
0: हाँ हाँ, अब क्या, हमारी अम्मा की बात, हाय हाय, ढोलक मजीरे के साथ जो गीत होते थे वो तुम क्या जानो, अम्मा का एक गाना तो अभी तक याद है, क्या कहते, हाँ लाल झुलई हाँ लाल कपल नारे झुलई हो लाल,
1: अभी झुलई हो लाल को बाद में गाना और तुम भी बाद में झूला झूलना, मैं कहती हूँ पहले बाजार पे जाओ।
0: जाता हूँ अभी गया, बस ये गया और ये आया।
1: हाँ, ये गया और ये आया। अच्छी प्रेजेंट लेने जा रहे हो या हरी धनिया की गड्डी, अब देर तो हो ही गई है, ठोक बचाकर पैसे खर्च करना, पैसा फालतू का नहीं है।

0: हो, अरे अब जाने तो दो।
1: एक बात तो रही गई।
0: क्या?
1: तुम्हारा हाल तो मैं जानती ही हूँ, ऐसे ही बस पैकेट लेके चले आओगे, जरा रंगीन कागज में बंधवा कर लाना।
0: अच्छा भाई, ठीक है।
1: ठीक तो है, मगर सुनो, वो एक चिट पर कुछ छपा रहता है मुआ अंग्रेजी में, वो भी लगवाए लाना पैकेट पर, समझ गए ना?
0: ओ, ज्यादा समझाओगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा, अब जाने भी दो।
1: अरे तू जाओ ना, कौन रुके है तुम्हें, बस जरा सी मेरी एक बात सुनते जाओ।
0: अभी क्या कुछ और बाकी रह गया है सुनाने को?
1: देखो जी, जल्दी जल्दी मत जाना, सड़क पर बड़ी भीड़ रहती है, देर तो हो ही गई है। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जितनी देर में पहुँचेंगे उतने ही इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
0: क्यों नहीं, तुम्हें तो कोई और काम है ही नहीं, और भी कोई फिक्र है सवाए खाने के? अच्छा तो मैं जाऊँ?
1: जाओ ना। बैठिए, आज इधर कैसे भूल पड़ी?
2: अरे अपनों ही के घर तो इत्मीनान से आया जाता है ना, क्यों मिसेस कटारा?
1: और नहीं तो क्या? आप कहीं से अभी भी आ रही हैं क्या?
3: आई नहीं हूँ, जा रही हूँ, असल में एक जगह हमारी दावत है आज वहीं।
1: अरे हम तो आए थे कि भी आज जमकर यहीं बैठेंगे।
2: फिर तो भला तुम हमारे लिए चाय भी कहाँ बनाओगी? आइए ये मिसेस कटारा, किचन में चाय बनाना है।
1: क्यों मिसेस माथुर, कोई ऐतराज तो नहीं?
3: अरे ऐतराज की क्या बात है, घर आपका, किचन आपका,
1: और क्यों नहीं। आइए मिसेस तलवार,
2: चलिए चलिए
1: चाय बना लाते हैं।
3: सुनिए प्लीज, बुरा मत मानिएगा। हाँ
1: नहीं नहीं, मैं भी जरा सब तैयार हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाने के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार हो लीजिए। अरे मिसेस माथुर, ये भगोने में क्या रखा है?
3: भगोने में? अरे वो तो डोसे का घोल है।
1: डोसा?
3: हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी। हे भगवान, इस डिनर के चक्कर में ये घोल लगता है धरा ही रह जाएगा।
1: धरा क्यों रह जाएगा?
2: अरे हम लोग किस लिए हैं भाई,
1: दुख मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं ना।
3: नहीं बात ये नहीं, वैसे तो इसे फ्रिज में रख दूंगी, कई दिनों तक उसमें बिल्कुल ताजा।
1: अरे छोड़ो भी कंजूस कहीं।
2: हाँ, तुम तो फिर बढ़िया दावत खाने जा रहे हो ना।
1: ये डोसे का सामान हम ले जा रहे हैं। आइए मिसेस तलवार,
2: चलते
1: हैं।
3: अरे सुनिए तो,
1: आप तैयार होकर इत्मीनान से जाइए,
4: गैस पर चाय का पानी
1: जरा। अरे बना के पीजिए ना।
4: अच्छा भैया
2: नमस्कार, कहके चल दी,
1: कितना महंगा सामान था, उठा ले गई दोनों, इतनी मेहनत से पीसा था मैंने,
3: जरूर कुछ खाने के चक्कर में आई होंगी, खुद को तो कुछ बनाना आता नहीं है।
1: भगवान करे उनके सारे डोसे खराब हो जाए।
0: अरे ये क्या बड़बड़ कर रही हो अकेले में?
3: अरे तुम आ गए?
0: हाँ आ तो गया, पर पूरे पैसे गल गए तुम्हारे बटुए के।
3: हाय राम, मेरे बटुए के? इसका मतलब फूका है 25 रूपए। हे भगवान, कितना समझा कर भेजा था तो भी।
0: अरे जाने भी दो, आजकल क्या होते हैं 25 रूपए?
3: क्यों नहीं होते, अब देख ले क्या लुटा देंगे वो अपने गुट्टू के जन्मदिन पर।
0: ओफो, तुम औरतों के दिल कभी साफ नहीं होते।
3: और तुम मर्दों के तो होते हैं, धोबी के धुले कलप लगे क्या?
0: और नहीं तो क्या, तुम औरतों की तरह नहीं कि सामने तो म्याऊं और पीठ पीछे गाली। अरे ये क्या, कोई आया था क्या? ये कुर्सियाँ?
3: आया नहीं, आई थी तुम्हारे चहेतों की खाऊ बीवियाँ, मिसेस कटारा और मिसेस तलवार। कितनी मेहनत से डोसे का घोल तैयार किया था, हाय हाय छाले पड़े मेरे हाथों में, और स्वाद ले रही होंगी वो दोनों, ले गई उठा के साला अपने घर।
0: अरे छोड़ो, सुनो आज हमें जो कुछ खाने को मिलेगा उसके आगे डोसे क्या चीज है, चलो चलो ना।
3: अच्छा चलो। सुनो जी, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है,
0: हो सकता है सिर्फ हमें ही बुलाया हो, आगे बढ़ो तो।
3: क्या बढ़ूं आगे, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई बर्थडे नहीं है। सुनो मिसेस गुप्ता एक दिन अपनी बहन की कोठी के बड़े भारी लोन की टींगी हाँक रही थी।
0: अच्छा?
3: मुझे लगता है कि बर्थडे पार्टी उसी लॉन में होगी।
0: नहीं नहीं, अरे भाई हाँ, गुप्ता जी मुझसे एक दिन किसी होटल की चर्चा कर रहे थे।
3: होटल?
0: हाँ मुझे लगता है वहीं पर।
3: लेकिन मैं कहती हूँ उनकी बहन के घर चलने में आखिर हर्ज क्या है?
0: मैं कहता हूँ उस होटल में चलो तो। लो गुप्ता जी और मिसेस गुप्ता आ गए, मैं कहता था मेरी बात हमेशा पक्की होती है, सिर्फ हमें ही बुलाया था। नमस्कार।
5: नमस्कार।
6: नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी।
1: अरे हैप्पी बर्थडे।

0: बेटे, ये लीजिए आपके लिए प्रेजेंट।
1: थैंक यू अंकल आंटी, लेकिन
2: अरे तो क्या हुआ बेटे, लगता है तुम्हारे अंकल आंटी को तारीख के मामले में कुछ भूल
3: क्या? क्या बर्थडे?
2: जी हाँ, वो तो कल है। अरे तो क्या हुआ? अरे आइए आइए, अंदर आइए।
3: जी अंकल नहीं, आप तो यही बाहर रहने दीजिए, अब जाने भी दीजिए, देर हो जाएगी।
0: हाँ।
3: हमें दूर जाना है ना।
1: हाँ, हाँ। कल तो आना ही है, आएंगे ना?
2: अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, कल तो आना है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, जरूर आएंगे बेटे। अच्छा अब चले।
0: हाँ। लो अब क्या होगा?
3: होगा क्या, कल फिर आना होगा। आना ही नहीं, कुछ प्रेजेंट भी लाना होगा।
0: प्रेजेंट तो आज दे तो चुके।
3: लेकिन लोग, तुम्हारी सहेलियां सब क्या कहेंगे, उनके दिखाने के लिए तो।
0: हे भगवान, कैसा मन हो उस दिन था आज का।
3: अरे भाई अब चलोगी भी? यहाँ तो तुम्हारे भूख के पेट में चूहे उचक रहे हैं।
0: हाय हाय, मेरा दोसे का घोल होता तो दोसे बन जाते, खा रही होंगी वे दोनों चटखारे मार मार।
3: ओहो, क्या उसके अलावा और कुछ नहीं है घर में?
0: है क्यों नहीं।
4: लेकिन सुनो, चलो मिसेस कटारा के घर चलते हैं,
0: अभी तो दोसे बन ही रहे होंगे।
3: हाँ ये ठीक है, चलो चले।
5: किसको चाहते हैं आप?
0: मेम साहब हैं घर पर?
5: साहब घर पर कोई नहीं है।
3: क्या, कहाँ गए सब?
5: मेम साहब की सहेली के घर गए हैं, आज तलवार मेम साहब के साथ दोसे की दावत में।
3: दोसे की दावत में? लेकिन दोसे का घोल तो हमारे घर से लाई थी, उसका क्या हुआ?
5: अरे साहब, उसी घोल के तो दोसे खाने गए हैं वो लोग। मेम साहब को तो दोसे बनाना आता ही नहीं था, उनकी सहेली ने कहा मैं बना दूंगी, बस चले गए वहीं सब लोग।
0: लो जी, यहाँ भी सारा मामला साफ है।
3: अरे गए काम से। अरे क्या हुआ, इतनी
0: अरे, क्यों? अरे घर में गैस पर चाय का पानी चढ़ा था और गैस बंद नहीं की थी। हाय हाय, इन दोनों कमबख्तों ने तो आज मेरा कबाड़ा ही कर दिया, डोसे का घोल गया। अब देखो भगवाना भी सही सलामत नहीं होगा और गैस का सिलेंडर जरूर खाली हो गया।

उर्मिला मिश्रा की लिखी झलकी आप सुन रहे थे, ये भी खूब रही। निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती
5: FM 103 पर। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार। और आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं अलका याग्निक। तो उनके गाए कुछ गीत आपको हम आज सुनवाएंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज, और आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म अनारी से इस गीत को, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का है। गायक स्वर अलका याग्निक का।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म बरसात से, समीर के लिखे बोल और नदीम श्रवण की धुन तैयार की गई, गायक स्वर अलका याग्निक का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

अभी आप सुन रहे थे ये भारतीय सेना गीत। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए अलका याग्निक के गायक सुर में फिल्म बी

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम एक कलाकार, और आज के कार्यक्रम की कलाकार है अलका याग्निक। लीजिए अब सुनिए फिल्म तेजाब से इस गीत को, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गायक स्वर अलका याग्निक का।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम एक कलाकार यहीं समाप्त होता है। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा

0: से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के

0: ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुविधा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कल

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग मंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: shifting from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया रंगू पिया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधता।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

0: एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम को। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग जगरूप सिंह का है, प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।
1: हेलो झांसी।

0: Luchasi.
1: नमस्कार, हेलो झांसी के सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के अपने कार्यक्रम हेलो झांसी में। मैं हूं आपका रेडियो साथी जगरूप सिंह, लेकर अपनी फरमाइशें जिनका आप सभी को इंतजार है। तो देर कैसी, सुनते हैं आज के पहले कॉलर की फरमाइश को। नमस्कार, हेलो झांसी में स्वागत है।
2: नमस्कार सर, मैं गंभीर सिंह कुशवाहा जालौन से बोल रहा हूँ सर।
1: जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपके कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: तो बहुत पुराना है, क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे सिलवर आने वाले हैं।
1: वाह, बहुत ही प्यारी पसंद है आपकी।
2: आप
1: बिल्कुल, और इस समय मौसम भी बहुत गर्मी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को?
2: मौसम तो सर प्रकृति का है सर, जो है वो बढ़िया है। धूप के लिए थोड़ा सा बच के रहें, बच्चों को बचा के रखें, अपने आप को बचा के रखें, धूप को कहीं ना कहीं
1: जी।
2: सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, और जल ही जीवन है, पानी को बनाए रखिए, अपना हाइड्रेट बने रहिए, पानी को पीते रहिए और स्वस्थ रहिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, मैं अशोक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
1: अशोक जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं झांसी स्थिति से बोल रहा हूँ सर।
1: जी बताएं, आज क्या सुनना चाहेंगे?
0: एक तारा बोले।
1: एक तारा बोले, अच्छा गीत।
0: थोड़ा सा मैं ढूंढने में बताऊँ क्या?
1: बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप गुनगुना देंगे तो और अच्छा लगेगा।
0: एक तारा बोले क्या कहे ये तुमसे, बात लंबी मतलब बोल, बोल दे कहीं सबके बोल तो फिर उसके बाद। एक तारा बोले।
1: वाह, बहुत ही प्यारा जी, हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे।

0: नमस्कार। हेलो झांसी में स्वागत है।
1: नमस्कार कमांडनी। हाँ मैं जिला बालोदरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति।
0: राजस्थान से मोहनलाल जी।
1: हाँ जी।
0: कैसे हैं राजस्थान के समय हाल?
1: हाल तो बेहाल है, 43 डिग्री सेल्सियस है।
0: गर्मी ज्यादा पड़ रही है वहाँ पर?
1: हाँ बिल्कुल पड़ रही है, और 2-3 दिन के लिए 2 डिग्री और बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है।
0: प्रकृति का तो ये रुख है इस समय। फिर आप सब वहाँ कैसे अपने आप को इस समय स्वस्थ और तंदुरुस्त रख रहे हैं?
1: हाँ वैसे तो हम इस गर्मी के आदि है।
0: बिल्कुल, हमारा शरीर जिस परिस्थिति में रहे वैसा ही आदि हो जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो रेगिस्तान इलाका है और पेड़ों का लू, गर्म लू चल रही है।
0: तो कौन सा आज गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत तो मैं आपको बता दूंगा, और हमारे फिल्म में नाच उठे संसार।
0: नाच उठे संसार।
1: हाँ, तेरे संग जीना तेरे संग मरना।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा गीत आपका है ये, और हम आपकी फरमाइश को भी पूरा सुनाएंगे। आप कुछ और कहना चाहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, और आप एक व्हाट्सएप आधारित कोई प्रोग्राम हो तो करने की कृपा करें, और फेसबुक पर मैं आपको लाइक करता रहता हूँ।
0: बहुत अच्छा है। आप हमारे आकाशवाणी से कैसे जुड़े हैं? सोशल
1: वो तो ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हूँ, और फेसबुक के माध्यम से भी जानकारी लेता रहता हूँ, और एक ग्रुप है हेलो फरमाइश का रेडियो।
0: जी बहुत बढ़िया। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अपने विचार भी हमारे आकाशवाणी के पेज पर देते हैं, फीडबैक?
1: हाँ देता, बिल्कुल देता हूँ।
0: चलिए, हम आपकी फरमाइश को आप तक पहुँचाते हैं। आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: बनवाले से ही परिहार बोल रहा हूँ, ग्वालियर से।
1: जी परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो झांसी में, बताएं।
0: जी बस आपके झांसी में कोई कभी फरमाइश करने का कॉल करते रहते हैं, और रात में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो रात में लोग देर तक जागते हैं, तो अभी और सुहाना हो गया है आपका कार्यक्रम।
1: अच्छा, कार्यक्रम और अच्छा लग गया कि नींद नहीं आ रही, तो फिर ये संगीत का सहारा ले लेते हैं।
0: संगीत का आनंद लेते हुए आदमी और सो जाता है, कम से कम 2 दिन तो राहत मिल जाती है लोगों को। सोमवार और गुरुवार को जो आता है प्रसारण होता है, तो रात में लोगों को राहत मिल जाती है कि अच्छे गाने लोगों के फरमाइश सुनने को मिलते हैं।
1: जी वनवाली जी, आप तो नियमित श्रोता हो गए हैं हमारे, कई बार आपकी हमारी बातचीत हुई है, और इसके अलावा कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं आकाशवाणी झांसी के?
0: संगीत आते हैं,

0: और क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के ही दतिया के रहने वाले हैं, तो हमको बहुत पसंद आते हैं। और जो खेती किसानी युवाणी कार्यक्रम है और भी जो संगीत का कार्यक्रम आता है तो वो भी सुनते हैं
1: बहुत
0: विशेष रूप से। और कुछ चर्चाएं आती हैं जो शिक्षा प्रद है, वो भी कार्यक्रम सुनते हैं जो 8-9 बजे आते हैं, लगभग 10 बजे के लगभग रात में कभी कभी।
1: जी बिल्कुल। तो आज आप कोई गीत, आप वैसे भी संगीत के बहुत प्रेमी हैं, गाते भी हैं, तो कोई गीत आप गुनगुना दीजिए जो सुनना चाहते हैं।
0: जी मैं अक्सर ये मनन चिंतन करते रहता हूँ जब भी झांसी कार्यक्रम में लगाऊं, ये कार्यक्रम रात को प्रसारित होता है, तो रात मैं बता रहा हूँ, गाना गुनगुना के बता रहा हूँ।
1: जी
0: याद में तेरी जाग जाग के हम

0: मैं बात कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, आप हेलो झांसी में बात हो रही है आपकी जगरूप सिंह से।
0: जी मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ, झांसी से ही।
1: प्रेम कुमार गौतम जी, आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: सर फरमाइश तो मेरी बड़ी दुर्लभ है।
1: दुर्लभ?
0: मैं बता देना चाहता हूँ, शायद विविध भारती या रेडियो के इतिहास में, मैं पूरे रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, शायद किसी ने गीत की फरमाइश कभी नहीं की होगी।
1: चलिए तो आज आप कर दीजिए, ये इतिहास तोड़ दीजिए आप।
0: जी जी, वो इसलिए कि ये गीत इतना टफ है किसी ने सुना नहीं होगा।
1: हाँ।
0: और मैं ऑर्केस्ट्रा में था तो मेरे डायरेक्टर मुझसे इस गीत को जरूर गाने के लिए कहते थे।
1: अरे
0: स्टेज पे हमने कभी नहीं गाया और खाली नहीं, तो मेरे डायरेक्टर मुझसे गाने में कहते थे। उन्होंने सवाल करता था कि जब हमें गाना नहीं है, स्टेज पे गीत चलता नहीं है, तो क्यों आप प्रैक्टिस कराते?
1: अच्छा।
0: तो वो ये कहते थे कि इतना दुर्लभ है, इसकी जो रिदम है या इसके जो स्वर है, इतने दुर्लभ है, मतलब कठिन है, गाने के लिए हम तुम्हारी प्रैक्टिस कराते।
1: अच्छा।
0: भले तुमको नहीं गाना।
1: तो आप जी,
0: ये एक हॉरर फिल्म में मुकेश ने गीत गाया है, शैतान मुजरिम। शैतान, हाँ, हॉरर फिल्म आई थी मोहन भाकरी की, शैतान मुजरिम फिल्म थी, और उसमें मुकेश ने गीत गाया है, मनोज कुमार से फिल्म आया है।
1: अच्छा।
0: और गीत के बोल हैं, दिए जाओ न गीत अपनी नहा रखी, मुझे कांटों में रहने दो, संभालो बाहर।

0: नमस्कार, स्वागत है।
1: नमस्कार सर, आकाशवाणी से सर
0: जी? आकाशवाणी झांसी में आप सुन रहे हैं, इस समय फरमाइश कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो झांसी की।
1: बिल्कुल सर। अच्छा, हम ओरछा से बोल रहे हैं सर, शिव कुमार तिवारी।
0: तिवारी जी, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आपने कॉल किया है।
1: बिल्कुल सर।
0: कैसे हैं आप?
1: आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है सर, मौसम भी है गर्मी का
0: जी,
1: तो बहुत सोच समझ के आना जाना रहता है।
0: हाँ, तो आने जाने का बिल्कुल ध्यान रखना है और पानी बराबर पीते रहना है, हाइड्रेट।
1: बिल्कुल सर, इसमें ध्यान रखना है, बच्चों का, बूढ़ों का और सभी लोगों का। अच्छा सर, आजकल जो पूरे विश्व में जो सब चीजें चल रही हैं
0: जी,
1: लड़ाई वगैरह की वजह से ये चीजें बहुत, मतलब सभी को, जितने आमजन हैं, जितने लोग हैं, सब पर वो है, तो आजकल बहुत ज्यादा महंगाई का वो पड़ रहा है
0: जी। बिल्कुल।
1: तो वो तो एक बेसिक चीजें हैं जो सभी की जरूरतमंद है।
0: हाँ,
1: लेकिन ऐसे में अब हम लोगों को, पूरे देश को एक साथ सबको इकट्ठा होके अपने देश के लिए काम करना है
0: जी।
1: और इसमें ये जब भी कभी परेशानी हुई है तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, हमारे देश की एक संस्कृति रही है। तो हम इस पे एक आपसे एक गाना गाना चाहते
0: हैं। बिल्कुल, बताएं।
1: ना मुंह छुआ के जियो और ना सर झुका के जियो।
0: बिल्कुल,
1: ना मुंह छुआ के जियो वाला गाना है, फिल्म का हमें नाम पता नहीं है।
0: आपकी तो फरमाइश बहुत प्यारी है जी।
1: हाँ, हम ये आपसे बात,
0: ठीक है, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। ना मुंह छिपा के जियो और ना सर झुका के जियो।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया।
1: गमों का दौर भी आए
0: तो। हाँ, बहुत ही प्यारा गीत है ये। आपने इस गीत की फरमाइश की और हम आपको जरूर सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत। आप अपने और मित्रों के नाम वगैरह कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं।
1: हाँ, मनीष लिख लें
0: जी
1: और मंजू लिख लें और बस दो चार लोग हैं।
0: बहुत बढ़िया। और हम आपके सभी मित्रों के लिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम हेलो झांसी में।
1: हाँ नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अमल समझदारी बात कर रहा हूँ, असम से, सोनितपुर असम से।
0: और कैसे हैं आप?
1: जी असम में तो आज बहुत बढ़िया है मौसम, बारिश भी नहीं हो रहा है, धूप भी नहीं हो रहा है, ऐसे बादल छाए हुए हैं और
0: समान मौसम है,
1: चल रहे।
0: चलिए तो आप अपनी फरमाइश बता दें।
1: जी दलाल मूवी का
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? दलाल मूवी का
1: ठहरे हुई पानी।
0: ठहरे हुए पानी में?
1: हाँ हाँ,
0: कंकन न मार।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ,
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गाना सुना आपने। चलिए
1: जी,
0: और आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: जी मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
0: जी बताएं नाम।
1: मेरे दोस्त है, सबसे अच्छे दोस्त है भाई कौन मुंडा है, बिमल बसुमतारी है, रमेश पात्र जी है, जोगेंद्र रंगपी है, और अविनाश तेली है, राम बाबू शर्मा है, गौतम रॉय बोरे है, और मंगेधर चंदेल जी है, और पूरन वर्मा है, राकेश है, गोल्डी है, और धर्मवीर जी है, और जितने भी हमारे झांसी लाइव सुन रहे हैं सबको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, आपके फ्रेंड्स लिस्ट काफी बड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, और आप अपनी फरमाइश को भी सुनते रहिए, हम आपके गीत को जरूर सुनाएंगे। आपने

0: छत्तर से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: इंद्रभान जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं।
0: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। आज ड्यूटी नहीं है सर, घर पे हूँ और कई काम किया सर, और कई केंद्र का प्रसारण भी सुना। आपका केंद्र कभी रिकॉर्डिंग होता है सर, प्रसारण कभी कभी सुनने को नहीं मिल पाता है सर। कोशिश कीजिएगा, जरूर शामिल कीजिएगा, भले लास्ट में शामिल कीजिएगा लेकिन कीजिएगा। तो आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है कालिया, अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का गाना है, गाय और प्रवीण बाबी है, गायक किशोर कुमार और गीत बोले जहाँ तेरी नजर है मेरी जा मुझे खबर है, ये किशोर कुमार जी का गाना है। और सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब कृपा कर श्रोता को आकाशवाणी झांसी में जुड़े सभी लोगों को हेलो एक्टर श्रोताओं को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, झांसी में सभी उद्घोषक भाई बहनों को भी डिडेट कर रहा हूँ सर। इसको जरूर सुना दीजिएगा कल, भले लास्ट में सुनाइएगा, जैसे भी मिलता है मौका सबसे लास्ट में सुना दीजिएगा।
1: बिल्कुल, हम जरूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, और आप तो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं और अच्छे सजग श्रोता हैं। आपने कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आपके विश्वास में, आपके इंतजार में हूँ सर, जरूर सुना दीजिएगा, भले लास्ट में सुनेगा लेकिन सुना
1: जी। बिल्कुल।

0: हेलो।
1: हेलो झांसी।
0: बिल्कुल स्वागत है आपका हेलो झांसी में। नमस्कार,
1: मैं रमेश चंद जसौरिया ग्राम जरियाई चिरगांव जिला झांसी से बोल रहा हूँ। सर
0: रमेश चंद जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: सर धन्यवाद। सर
0: बताएं क्या करते हैं आप, क्या समाचार हैं आपके?
1: मैं सर सोशल वर्कर हूँ सर।
0: बहुत अच्छा
1: सर। मैं मतलब जो जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके साथ उनकी मदद करता हूँ, झांसी या मौत जा करके सर। यही मेरा काम है सर।
0: बहुत अच्छा है, समाज सेवा तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। और आप क्या गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज मैं सर एक पुरानी फिल्म थी देवर,
0: देवर फिल्म का गीत,
1: देवर का एक गाना है, हाय सैया रूठे हमारे सैया क्यों रूठे, लता मंगेशकर की आवाज में है ये सर।
0: अच्छा, आपकी फरमाइश का ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं?
1: सर मैं अपनी पत्नी का नाम ले सकता हूँ सर क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए।
1: मेरी मेरी मेरी पत्नी भी इसी गीत को सुनना चाहती। मेरी पत्नी का नाम है उषा रानी जसौरिया और मेरे नाती का नाम है बासित जसौरिया सर।
0: तो ये आप आकाशवाणी झांसी बिल्कुल नियमित सुनते हैं, कौन कौन से गीत अच्छे लगते हैं?
1: 2001 से सुन रहा हूँ सर।
0: 2001
1: से सर?
0: एक से, वाह।
1: हाँ सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल हमेशा ही सुनता हूँ सर। ये मेरा मोबाइल पे FM झांसी ही है सर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है झांसी।
0: हाँ,
1: मेरे
0: यहाँ
1: से 35 किलोमीटर।
0: चलो तो ये हेलो झांसी आपको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम?
1: हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। एक सर मैं आपको और बता दूं सर, ये हेलो फरमाइल जब आपका शुरू हुआ था तो पहला कॉल मेरा ही लगा था सर।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात।
1: मेरा ही लगा था जब आप पे हेलो झांसी शुरू हुआ था सर।
0: ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आप पहले श्रोता हैं हमारे इस प्रोग्राम के।
1: मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरा ही कॉल पहले लगा था सर।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके और हम आपकी फरमाइश को आपके पूरे परिवार के लिए प्रेषित करते हैं। धन्यवाद
1: सर। नमस्कार सर।

0: मेरा इंटीरियर सारी हम परिवार आपसे बात कर रहा हूँ।
1: नीतेश
0: जी,
1: नीतेश जी आपकी फरमाइश क्या है, आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है गर्व।
1: गर्व फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
0: जिसे दिल से चाहे उसे कैसे भूल जाए।
1: अच्छा, करते क्या हैं आप?
0: जी सर, भी पढ़ाई कर रहे हैं।
1: कितने में पढ़ रहे हैं?
0: नाइन्थ में।
1: नाइन्थ में पढ़ रहे हैं और रेडियो भी सुनते रहते हैं?
0: जी सर, रेडियो आकाशवाणी झांसी सारे प्रोग्राम सुनते हैं।
1: अरे वाह, तो हेलो झांसी में कितनी बार शामिल हुआ आपका कॉल?
0: कई बार हो चुका।
1: अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। पढ़ाई में ध्यान रखिए और संगीत को भी सुनते रहिए। संगीत तो हमारे जीवन का एक आधार है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने विद्यार्थी साथियों के लिए?
0: जी बिल्कुल, अपने पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा से ज्यादा दें और रेडियो भी सुने।
1: हाँ, रेडियो भी सुने, रेडियो से, क्योंकि तमाम ऐसी इन्फोटेनमेंट जो एक मनोरंजन के साथ साथ कई सूचनाएं जो हमें जानकारी है वो मिलती रहती है। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो झांसी में स्वागत है।
1: हेलो जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, बताएं कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी।
1: जी सर,
0: बताएं क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: बिल्कुल सर, फरमाइश तो पूरी हमारी होती है आकाशवाणी झांसी के लोकप्रिय कार्यक्रम में, और उससे भी साथ गर्वी आप बातें होती है आपकी, और आपकी प्रस्तुतियां बहुत ही खास और मनमोहक होती है, जिसे हमें आत्मविश्वास और हृदय को प्रसन्न करने वाले शब्दों का भी चयन मिल पाता है सर।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान करके, और आप जैसे श्रोताओं से ही तो ये आकाशवाणी जितने भी केंद्र हैं वो सब अच्छे प्रोग्राम्स आप सबसे आपसे उत्साहित होकर आप तक पहुंचाते रहते हैं।
1: एक गाना है सर, मूवी का नाम है सर जान तेरे नाम।
0: जान तेरे नाम का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे।
0: बहुत प्यारा गीत है, और कॉलेज भी बंद इस समय अब होने वाले हैं, तो आप करते क्या हैं?
1: जी सर, मैं तो वार्ताकार हूँ आकाशवाणी शहडोल में, मेरा वार्ता करने जाता हूँ, और साथ में जो किसानवाड़ी होता है उसके लिए अपनी योगदान भी देता हूँ सर।
0: बहुत अच्छा, आपसे एक दो बार और भी बात हुई है तो।
1: जी सर, बिल्कुल सर, आपके कार्यक्रमों का प्रसार बहुत ही शानदार होता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से आकाशवाणी झांसी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन से ब्लूटूथ के माध्यम से सुनते हैं सर, बहुत ही स्पष्ट आपकी आवाज़ें आती है, और पूरी टीम को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, और इस 90 वर्ष के सफर में भी आकाशवाणी झांसी हमारे साथ यूं ही बना रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस संदेश के लिए आपने कॉल किया, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।

0: साथियों, ये था हमारा आज का फोन इन प्रोग्राम हेलो झांसी। अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें फोन करते हैं 0510232006 यानी 0510232006 पर। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हुए हैं, कृपया आप 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। समय अभाव के कारण जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल नहीं हो सके उनके नाम हैं इंद्रभान, प्रेम सिंह, रमेश, लतीफ, सुरेश, नीतेश, अवनीश शर्मा, सुनील, राजपाल, जितेंद्र और मंगल सिंह। श्रोताओं, कार्यक्रमों के लिए सुझाव आप हमें हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज आपने अपनी बातचीत के साथ संगीत का सफर पूरा किया अपने रेडियो साथी जगरूप सिंह के साथ। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अंजलि कुमारी ने। आपको याद दिला दें, आप अपने पसंद के गीत सुनने के लिए कॉल कर सकते हैं हर बुधवार और रविवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक, और प्रसारण होता है हर सोमवार एवं गुरुवार को रात्रि 9:30 से। अब दें जाने की इजाजत, स्वीकार करें जगरूप सिंह का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो झांसी।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग जगरूप सिंह का था, प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई हुई कुछ गजलें।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह का गाया हुआ एक और कलाम।

जगजीत सिंह की गाई हुई इस गजल के साथ अब सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई हुई कुछ गजलें। FM 103 पर आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार, हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में

इस वर्ष निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।